0: Ritchie Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: साइमा कहती है हमारे ऑफिस में कि मेरी बेस्टी पर एक किताब लिखनी चाहिए एंड आई एम बिगिनिंग टू काइंड ऑफ अग्री विद साइमा. आई टेल यू व्हाई. सो बेस्टी और उसका बॉयफ्रेंड स्टार्टेड टू लिव इन टुगेदर अबाउट 1.5 साल पहले, ठीक है, और अभी रिसेंटली पिछले महीने उन दोनों का ब्रेकअप हो गया. तो बेस्टी का और उसके बॉयफ्रेंड का ये पैक्ट था कि अगर ब्रेकअप होगा तो बेस्टी घर छोड़ के जाएगी, क्योंकि बॉयफ्रेंड पहले से उस घर में रह रहा था, ऑल्दो वो दोनों आधा आधा रेंट देते हैं. अब सीन ये है कि पिछले एक महीने से बेस्टी और उसका अब एक्स बॉयफ्रेंड एक ही घर में रह रहे हैं एंड बेस्टी ढूंढ रही है अपने लिए घर, और क्योंकि वो ऐसे वास्तु और न्यूमरोलॉजी वगैरह में बिलीव करती है उसे घर नहीं मिल रहा है. तो अभी सोचो सेम फ्लोर पर है, बेस्टी अलग सो रही है, एक्स बॉयफ्रेंड अलग सो रहा है, और दोनों की दीवारें ना बीच के कमरे की काफ़ी पोरस है, तो एक को दूसरे के खराटे की आवाज़ आती है, एक को दूसरे के लव सॉन्ग्स की आवाज़ आती है. मेजर केओस. और ये मैं कभी, मतलब हम जब लिव इन के बारे में बात करते हैं, मैंने कभी ऐसे किसी को डिस्कशन करते हुए नहीं सुना कि अगर लिव इन वर्क नहीं करता तो उसके बाद बंदा और बंदी ब्रेकअप कैसे करते हैं, यूर लिविंग इन द सेम हाउस. अगर आप भी एक ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप में हो एंड इसी तरह आपकी भी जिंदगी में भाषण है, रियली आई जस्ट वॉन्ट हियर योर स्टोरी ताकि मैं अपनी बेस्टी को बता सकूँ शी इज़ नॉट दी ओनली वन सफरिंग. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virpa la burga. Mirchi, burga. Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता।
2: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग व्हाट?
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिया मेरे को?
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर? ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
2: सर संडे 3 बजे दिन में सर? मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है वो, 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए।
2: पहले अपना ही निकाल लो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ये जो ऑफिस ट्रिप के बहाने करके आप अपने इंटर्न के साथ आशुकीनियां कर रहे हो इन गॉड फॉर सेकन प्लेसेस, अगर आपकी गर्लफ्रेंड को ये पता चल गया ना, धजियां उड़ने वाली हैं आपकी. But I guess you figured that it is time for all your secret confessions to come to life, ताकि मैं आपको रोशिफाई कर दूं, and we will forget all about it, and we'll forget it ever happened. तो ये बताने के लिए कि आपकी जिंदगी में क्या क्या भसड़ वाले काम किए हैं आपने, hit me up on Insta या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड फॉर द टाइम बींग मेरे साथ है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी,
2: कैसे हो आप?
3: I'm good.
2: Good तो नहीं हो, नॉटी बॉय काफी हो, बिकॉज आपने मुझे जो अपना कन्फेशन लेके भेजा था, दैट लेफ्ट मी कि मैं और जानना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है आपके जीवन में. तो क्या हो रहा है आपके जीवन में मिस्ट्री कॉलर?
3: यार जीवन में बहुत कुछ हो रहा है. तो बेसिकली ऐसा है कि लाइक हमारा 5 साल का रिलेशनशिप था, एंड हमारी शादी को भी 5 साल, मतलब टोटल 10 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. बट ये कि हमारी जो यू नो सेक्स लाइफ है ना, वो थोड़ी सी मोनोटोनस सी हो गई है. लाइक रेगुलर सेक्स लाइफ, उसमें थोड़ा सा स्पार्क मिसिंग है. एंड ऐसा होता है ज्यादातर कि यू नो जब भी, मतलब मेरा ऐसा सीन रहता है कि मैं थोड़ा सा सेक्स के बाद भी ना वो तो लाइक सो जाती है, बट मुझे फिर भी अभी भी ये रहती है कि कुछ तो यार मिसिंग है, मतलब थोड़ा और होना चाहिए कुछ. एंड देन जो भी वो भड़ास है या जो थोड़ा और की नीड है ना, वो फिर मैं बाथरूम में जाके पूरी करता हूँ.
2: ओके.
3: और मुश्किल ये है कि इसमें ना कि ये बात अब तक मेरी वाइफ को पता ही नहीं है.
2: मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आई मीन यू नो आई टोटली अंडरस्टैंड इट. यूजुअली इंडिया में उल्टा होता है, दैट द मैन टेक्स केयर ऑफ हिज नीड्स और उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वाइफ की नीड्स पूरी हुई है या नहीं, बट यहाँ पे उल्टा है. एंड सो लॉन्ग इज योर वाइफ डजंट फाइंड आउट एंड आप लिटरली चीट नहीं कर रहे उस पर, इजंट दिस काइंड ऑफ ओके? आपको भी तो अपनी नीड्स फुलफिल करनी है, करेक्ट?
3: हाँ, बट मेरा कई बार लगता भी है कि क्या शायद, मतलब उसको बताऊं तो फिर वो ये ना सोचे कि उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं है, बट मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा हो कि यार वो स्पार्क रहे मतलब दोनों के बीच में ना.
2: एंड ऑनेस्टली आई थिंक मिस्ट्री कॉलर की द फैक्ट कि आपके बीच में वो स्पार्क है ना, दैट्स बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स रिप्रेस नहीं कर रहे हो. इनफैक्ट इन दिस इंटायर कैंपेन हमारे पास एक इंटिमेसी एक्सपर्ट भी हैं ऑन द शो, पल्लवी बर्नवाल, और वो यही कहती हैं कि हर इंसान के लिए इंटिमेसी का अर्थ अलग है. तो आपकी वाइफ को जितना मिल रहा है इस स्प्रेड में से, उसके लिए काफ़ी है. आपको शायद और की ज़रूरत है, और अगर आप आउटसाइड द रिलेशनशिप नहीं जा रहे हो टू लुक फॉर दैट, यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर नीड्स योर सेल्फ, आई थिंक इट्स प्रिटी ओके. मुझे नहीं लगता आपको उसे बताना चाहिए, बिकॉज दैट विल जस्ट मेक हर क्वेश्चन व्हाई यू आर नॉट फुली सैटिस्फाइड इन योर रिलेशनशिप, है ना?
3: यही बस मेरे दिमाग में कंफ्यूजन थी.
2: आई थिंक आपने इसे बोल दिया है और अब आपने इसे किसी के साथ शेयर कर दिया है, यू विल फील लेस एंग्शियस अबाउट इट. बट एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर मैं आपकी जगह होती शायद मैं भी यही करती. थोड़ी सी रोशिफिकेशन कर दूं आपकी?
3: बिल्कुल, बहुत जरूरत है.
2: एग्जैक्टली, हियर यू गो.
0: यू हैव बीन रोशिफाइड.
2: कैसा लग रहा है आपको? बेहतर?
3: बहुत अच्छा लग रहा है.
2: I am so glad that you know what, Mr. Caller, you could come on air and share this with me. ये बहुत ही intimate situation है और I hope that आपके relationship में spark हमेशा रहे, अपनी wife को देख के हमेशा आपके दिल में कुछ कुछ अभी भी हो. और अगर आपकी भी जिंदगी में मेरे Mr. Caller की तरह you have a little confession to make, why don't you hit me up Insta पर या FB पर. I'll be so happy to talk to you. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHIE, and whatever you do, I promise you, I will be with you right till the end of time. तो कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: कोई प्ले नहीं ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बच्चों का पपेट शो चल रहा है, देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो माय एक्स बॉयफ्रेंड एंड आई, जब हम डेट कर रहे थे, वी वेंट आउट टू वॉच अ प्ले, क्योंकि मैं इतना चींची करती थी कि भाई तू वो नहीं करता जो मैं चाहती हूँ, हम हमेशा वही कर रहे होते हैं जो तुझे चाहिए. सो ही से अच्छा ठीक है, चल एक प्ले देखने चलते हैं. पर अब जब वहां हम पहुंचे, वी रियलाइज उस दिन एज लक वुड हैव इट कोई प्ले नहीं चल रहा था, लेकिन बच्चों के लिए एक पपेट शो था जो ही वॉज लाइक आई यू श्योर, एंड आई वॉज लाइक यार कितना खराब हो सकता है, अगर बच्चे एंटरटेन हो रहे हैं मैं तो पक्का एंटरटेन हो जाऊंगी. सो उस पूरे पपेट शो में पहले तो उसने मुंह बनाया, लेकिन आई थिंक 10 मिनट्स इनटू दैट पपेट शो उसको भी इतने मजे आ रहे थे कि उसने एक वीडियो बना लिया उस पपेट शो का, और हम दोनों इतना हंसे उसके बाद, बिकॉज इट वॉज सच अ क्यूट पपेट शो कि फॉर द लेंथ ऑफ आर इंटायर रिलेशनशिप हम उस पपेट शो के लाइन्स एक दूसरे को रिसाइट करके सुनाते थे, और वो हमारा इंटरनल जोक होता था, विच वॉज सो मच फन. बट यू नो वट द मॉरल ऑफ द स्टोरी देयर वॉज, कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो, कुछ अनयूजल ट्राई करते रहना चाहिए, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू विल एंड अप मेकिंग मेमोरीज इन अ रिलेशनशिप. अगर आप हर बार मिलोगे और वही करोगे जो हर बार करते हो, देन देर इज नो न्यूनेस इन द रिलेशनशिप, और वो बिल्ट हो जाएगा एंड यू वोंट इवन नो व्हाई द रिलेशनशिप स्टॉप्ड वर्किंग फॉर यू. सो अगला एडवेंचर प्लान करते समय अगर आपको मदद की जरूरत है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड इफ देयर इज अ पपेट शो यू वॉन्ट टू टेक मी टू, आई बी हैप्पी टू डू दैट. सो व्हाइल यू फिगर दैट आउट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जिंदगी में इट इज ओके टू बी मिसअंडरस्टूड. एवरी टाइम कोई आपको समझता नहीं है, आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है. अनलेस यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड डीलिंग विद योर पार्टनर, तब तो आप जितनी एक्सप्लेनेशन दे दो कम है. और अगर जिंदगी में आपके साथ कुछ भी हो रहा है इन द लव एंड रिलेशनशिप बिजनेस, आई एम इंटरेस्टेड. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो फाइंड मी ऑन द ग्राम एंड फेसबुक सो दैट यू एंड आई कैन गेट टॉकिंग. एंड एज आई से दिस, मेरे साथ लाइन पर है सोनाली. हाय बेब.
3: हेलो,
2: कैसे हो आप?
3: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
2: मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ यार. एंड इस ऑफिस में आके कोई कैसा भी होता है उसका मूड बेहतर हो ही जाता है. सो आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द ऑफिस दैट आई वर्क इन. आप मुझे ये बताओ कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है?
3: एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले एक मतलब रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ मेरा, तो मैं बहुत परेशान थी. तो मैंने मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बाद में कुछ टाइम में सजेस्ट किया कि तू मतलब जो डेटिंग वेबसाइट है उस पर ट्राई कर, ऐसे ही मतलब प्रोफाइल बनाया. तो मैं एक लड़के से मिली, ऋषभ नाम का एक लड़का है, तो उससे मिली मैं. मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा पर्सन है, बट वो जो था वो एक्चुअली बाद में नहीं था वैसा. मतलब वो पहले मतलब बहुत बहुत केयरिंग, वो बहुत बहुत पार्टी वार्टी करने वाला, जैसे वो प्रटेंड करता था, वो बाद में वैसा नहीं था. फिर अभी कुछ टाइम पहले मुझे पता चला कि शादी हो रही है उसकी. ठीक है, ही वाज लाइक कि क्या कहते हैं, यार तुम बहुत सही थी, तुमको तुमसे कर लेना चाहिए था मुझे. फिर मुझे बीच में पता चला कि शादी नहीं थी, झूठ बोल रहा था. और मुझे ये बात अभी पता चली, मैंने कभी नहीं बोला उसको कि जबरदस्ती रुकना है उसको, क्योंकि सीरियस नहीं था सच बहुत ज्यादा. बट हाँ, कुछ टाइम हो गया था, 2-3 महीने हो गए थे, मुझे लगा कि ठीक है. बीच में फिर कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई है, मुझे जाना है, उसके साथ मेरा बहुत टाइम रहा है साथ में, तो मैं शादी की सोच रहा हूँ, मेरे घर वाले मिल रहे हैं उससे. आई वाज लाइक मुझे क्यों बता रहे हो, जाना है जाओ. फिर मैंने उससे कॉल किया, मैंने कहा क्या चल रहा है, झूठ क्यों बोलते हो? कह रहे नहीं झूठ नहीं बोल रहा. मैंने कहा मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो, शादी तुम्हारी नहीं हुई. तो वो बस क्या कहते हैं, तुमको वापस लाने के लिए बोल रहा था मैं. डेटिंग वेबसाइट इज लाइक हेल.
2: आई काइंड ऑफ टोटली अग्री विद यू, यू नो, बिकॉज आई रिसेंटली लाइक लास्ट ईयर मेट समबडी. यार वो बंदा एकदम सही लग रहा था, ठीक है, और उसे पता था कि मैं रेडियो में काम करती हूँ, ये वो. तो तीसरी डेट पे मैं उसे कहने वाली थी कि भैया हमारी नहीं मतलब मेरी वाइब नहीं बैठ रही है. मुझे कहता है चल शादी कर लेते हैं. ऐसे 3 डेट्स में क्या शादी करते हैं? तो बोलता है कि नहीं, आई रियली वांट टू मैरी यू. तो जो भी मैंने उसको जब मना किया, तो भाई वो मेरे से कॉफी शॉप में चिल्ला के बोलने लग गया कि तुम जैसी लड़कियां फिर डेटिंग एप्स पे आती क्यों हो, अगर तुम सीरियस नहीं होती हो. आई वाज लाइक डूड, आई मेट यू लाइक 3 टाइम्स, नहीं बात हुई.
3: ये भी कुछ ऐसा ही था, मतलब यार ठीक है, नहीं चल रहा.
2: पता है ऐसे बंदे ऐसे होते हैं दैट अगर आप उनको डंप करने लगोगे ना, वो सिर्फ चिल्लाएगा नहीं, अगर आप पब्लिक प्लेस में ऐसा नहीं करो वो हाथ भी उठा सकते हैं. लिटरली आई हैव बीन देयर, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट. प्लीज डंप दिस गाय राइट नाउ.
3: मैंने डंप कर दिया इसी वजह से.
2: बहुत सही किया आपने. आई एम सो ग्लैड दैट वी आर डिस्कसिंग दिस. द गाय आई मेट वाज इन द मीडिया, मेरे ऑफिस के 2 ऑफिस छोड़ के रहता है, बट लाइक ही सच अ जॉक. आई होप वो सुन रहा हो और आई होप उसे लूज मोशंस लग जाए. एंड आई होप आपके बंदे को भी लूज मोशंस लग जाए.
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: है ना. आई थिंक इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. हम दोनों की सिस्टरहुड कितनी सही एस्टैब्लिश हुई है. एंड आई होप दैट यू मीट समवन हु रियली लव्स यू फॉर द पर्सन दैट यू आर जेन्युइनली.
3: थैंक यू
2: सो मच फॉर लाइक सेंडिंग मी योर स्टोरी, टॉकिंग टू मी अबाउट इट. आई फील रियली नाइस. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ डिसेंट कर रही हूँ जिंदगी में, द पीपल ट्रस्ट मी विद देयर स्टोरीज. एंड आई होप वी कंटिन्यू टॉकिंग इन द फ्यूचर एज वेल.
3: मैं डेली ऑफिस से आती हूँ तो आपको सुनते हुए आती हूँ पूरे टाइम. और मतलब आई वुड लव टू.
2: थैंक यू सो मच. आई होप यू कीप लिसनिंग. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माय डार्लिंग.
3: थैंक यू.
2: बाय. और अगर आप भी ऐसे ही जिंदगी में अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हो, एंड आई प्रॉमिस कि आपकी हर एक स्टोरी के लिए मेरे पास अपनी खुद की 2 होंगी, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाट एप्स यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: इधर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
0: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
0: कौन है बता?
1: कोहली।
0: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता।
2: भाई, भाई, भाई।
0: तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: है? वो क्या होता है?
0: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

नेबर पहले बहुत लेजी थी, सडनली उसका बॉयफ्रेंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चला गया उसके साथ, एंड शी डिस्कवर्ड कि डांसिंग टुगेदर कैन बी सो मच फन. अगर नन ऑफ दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. तो पहले मेरी नेबर है, बहुत हॉट है, सारी की सारी सोसाइटी इज क्रे अबाउट हर. तो उसका और उसके बॉयफ्रेंड का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हो गया बिकॉज ही गॉट अ जॉब इन दुबई. तो अब क्या होता है, ये दोनों स्टे कनेक्टेड तो करते हैं पूरा दिन, लेकिन क्योंकि थोड़े से पागल भी है, दे डिसाइडेड टू ज्वाइन ऑनलाइन डांसिंग क्लासेस टुगेदर. तो रोज, मतलब शाम को ना सम रैंडम ऑकवर्ड टाइम उसके घर से आवाज आ रही होती है बिकॉज वो डायरेक्टली मेरे घर के सामने रहती है. डिस्को दीवाने, धुम मचाले, एंड आई एम थिंकिंग टू माई सेल्फ, दिस इज रियली क्रेजी. तो मैंने उसे अपने घर कॉफी के लिए बुलाया एंड आई वाज लाइक, क्या तेरा बॉयफ्रेंड भी ये डांस क्लासेस उतनी इंजॉय करता है जितना कि तू? ऑब्वियसली, एंड यू आर लुकिंग लाइक सो हॉट एंड यू हैव लॉस्ट इवन मोर वेट, ये वो. तो शी इज लाइक, यार मेरे से ज्यादा उसे मजे आते हैं और हमारी बॉन्डिंग नेक्स्ट लेवल होती है क्योंकि वो भी कंपेटिटिव है, मैं भी कंपेटिटिव हूँ, वी ट्राई एंड बी नंबर वन इन दिस डांस क्लास. सो इट्स कीपिंग द पैशन काइंड ऑफ अलाइव इन द रिलेशनशिप. एंड आई वाज लाइक, यार ये सही तरीका है. तो अगर आप भी एक नए एलडीआर में हो एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू स्टे कनेक्टेड एंड स्टे पैशनेट, मेरी ये नेबर का धूम मचाले वाला आइडिया ट्राई करके देखो, इट माइट वर्क फॉर यू एज वेल. एंड वंस इट डज, मैं नेबर का हैंडल नहीं बता रही हूँ ग्राम पर, बट आई टेल यू माइन, इट इज मिर्ची रोशी. यू कैन ऑल्सो फाइंड मी ऑन फेसबुक. सो हिट मी अप विद योर लाइफ के टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

चला तो गाना बजा दूं।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मेरी बेस्टी और मैं एक खास किस्म के डोडोज हैं और जब हम वेले होते हैं तो हम फालतू की ऐसे गेम्स डिवाइस करते रहते हैं फॉर आर फ्यूचर रिलेशनशिप या करंट रिलेशनशिप वट एवर आर रिलेशनशिप स्टेटस इज. तो हमने एक गेम डिवाइस की कुछ साल पहले कॉल्ड सिंपली स्पीकिंग द किसिंग गेम. इस किसिंग गेम में होता यह है कि आप और आपका पार्टनर एक वर्ड चूज कर लेते हो. अगर आप एक डेट पर जा रहे हो या एक मूवी देखने जा रहे हो या जो भी आपका सीन है, आप डिनर नाइट पर जा रहे हो, एंड जब भी आप वो एक वर्ड सुनोगे यू हैव टू किस ईच अदर. अब वो वर्ड कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी चिकन, इट कुड बी ठंड, इट कुड बी गर्मी, इट कुड बी दिल्ली, इट कुड बी मुंबई, कुछ भी. आप एक वर्ड डिसाइड कर लेते हो और जब भी आप वो वर्ड सुनोगे यू हैव टू किस ईच अदर. आप इमेजिन नहीं कर सकते हो द काइंड ऑफ फन यू कैन हैव व्हाइल प्लेइंग दिस गेम. आई रिमेंबर द लास्ट टाइम माई पार्टनर एंड आई डिसाइडेड कि हम एक पिक्चर देखने जा रहे थे एंड द वर्ड वॉज गोइंग टू बी क्रिसमस और फनीली उस पिक्चर का नाम था द क्रिसमस लव स्टोरी. तो आप इमेजिन कर सकते हो उस पिक्चर में हमने कितनी बार ना चाहते हुए भी एक दूसरे को किस किया बिकॉज वेल वी वर प्लेइंग द किसिंग गेम. आप इसे ट्राई कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ एंड देन टेल मी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू और फिर शायद आप मेरी बेस्टी और मैं तीनों नोट्स कंपेयर कर सकते हैं. और ये सब करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड मी इंस्टा पर या FB पर एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड बेबी, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची. It's hot. Zara, zara.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ये जो ऑफिस ट्रिप के बहाने करके आप अपने इंटर्न के साथ आशुकीनियाँ कर रहे हो इन गॉड फॉर सेकन प्लेसेस, अगर आपकी गर्लफ्रेंड को ही पता चल गया ना, धजियाँ उड़ने वाली हैं आपकी.
3: The secret box.
2: But I guess you figured that it is time for all your secret confessions to come to life, ताकि मैं आपको रोशिफाई कर दूं and we will forget all about it and we'll forget it ever happened. तो ये बताने के लिए कि आपकी जिंदगी में क्या क्या भसड़ वाले काम किए हैं आपने, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड फॉर द टाइम बीइंग मेरे साथ है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी,
2: कैसे हो आप?
4: I'm good.
2: Good तो नहीं हो, नॉटी बॉय काफी हो, बिकॉज आपने मुझे जो अपना कन्फेशन लेके भेजा था, दैट लेफ्ट मी कि मैं और जानना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है आपके जीवन में. तो क्या हो रहा है आपके जीवन में मिस्ट्री कॉलर?
4: यार जीवन में बहुत कुछ हो रहा है. तो बेसिकली ऐसा है कि लाइक हमारा 5 साल का रिलेशनशिप था एंड हमारी शादी को भी 5 साल, मतलब टोटल 10 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. बट ये कि हमारी जो यू नो सेक्स लाइफ है ना, वो थोड़ी सी मोनोटोनस सी हो गई है. लाइक रेगुलर सेक्स लाइफ, उसमें थोड़ा सा स्पार्क मिसिंग है. एंड ऐसा होता है ज्यादातर कि यू नो जब भी, मतलब मेरा ऐसा सीन रहता है कि मैं थोड़ा सा सेक्स के बाद भी ना वो तो लाइक सो जाती है, बट मुझे फिर भी अभी भी ये रहती है कि कुछ तो यार मिसिंग है, मतलब थोड़ा और होना चाहिए कुछ. एंड देन जो भी वो भड़ास है या जो थोड़ा और की नीड है ना, वो फिर मैं बाथरूम में जाके पूरी करता हूँ.
2: ओके.
4: और मुश्किल ये है कि इसमें ना कि ये बात अब तक मेरी वाइफ को पता ही नहीं है.
2: मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आई मीन यू नो आई टोटली अंडरस्टैंड इट. यूजुअली इंडिया में उल्टा होता है, दैट द मैन टेक्स केयर ऑफ हिज नीड्स और उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वाइफ की नीड्स पूरी हुई है या नहीं, बट यहाँ पे उल्टा है. एंड सो लॉन्ग इज योर वाइफ डजंट फाइंड आउट एंड आप लिटरली चीट नहीं कर रहे उस पर, इजंट दिस काइंड ऑफ ओके? आपको भी तो अपनी नीड्स फुलफिल करनी है, करेक्ट?
4: हाँ, बट मेरा कई बार लगता भी है कि क्या शायद, मतलब उसको बताऊं तो फिर वो ये ना सोचे कि उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं है, बट मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा हो कि यार वो स्पार्क रहे मतलब दोनों के बीच में ना.
2: एंड ऑनेस्टली आई थिंक मिस्ट्री कॉलर की द फैक्ट कि आपके बीच में वो स्पार्क है ना, दैट्स बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स रिप्रेस नहीं कर रहे हो. इनफैक्ट इन दिस इंटायर कैंपेन हमारे पास एक इंटिमेसी एक्सपर्ट भी हैं ऑन द शो, पल्लवी बर्नवाल, और वो यही कहती हैं कि हर इंसान के लिए इंटिमेसी का अर्थ अलग है. तो आपकी वाइफ को जितना मिल रहा है इस स्प्रेड में से, उसके लिए काफ़ी है. आपको शायद और की ज़रूरत है. और अगर आप आउटसाइड द रिलेशनशिप नहीं जा रहे हो टू लुक फॉर दैट, यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर नीड्स योर सेल्फ, आई थिंक इट्स प्रीटी ओके. मुझे नहीं लगता आपको उसे बताना चाहिए, बिकॉज दैट विल जस्ट मेक हर क्वेश्चन व्हाई यू आर नॉट फुली सैटिस्फाइड इन योर रिलेशनशिप, है ना?
4: यही बस मेरे दिमाग में कंफ्यूजन थी.
2: आई थिंक आपने इसे बोल दिया है और अब आपने इसे किसी के साथ शेयर कर दिया है, यू विल फील लेस एंग्शियस अबाउट इट. बट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, अगर मैं आपकी जगह होती शायद मैं भी यही करती. थोड़ी सी रोशिफिकेशन कर दूं आपकी?
4: बिल्कुल, बहुत जरूरत है.
2: एग्जैक्टली, हियर यू गो.
0: यू हैव बीन रोशिफाइड.
2: कैसा लग रहा है आपको? बेहतर?
4: बहुत अच्छा लग रहा है.
2: I am so glad that you know what, Mr. Caller, you could come on air and share this with me. ये बहुत ही intimate situation है और I hope that आपके relationship में spark हमेशा रहे, अपनी wife को देख के हमेशा आपके दिल में कुछ कुछ अभी भी हो. और अगर आपकी भी जिंदगी में मेरे Mr. Caller की तरह you have a little confession to make, why don't you hit me up Insta पर या FB पर. I'll be so happy to talk to you. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHIE. And whatever you do, I promise you, I will be with you right till the end of time. तो कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है पता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी हंस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपका पार्टनर है वो स्मार्टफोन नहीं है कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सब पूरी कर देगा. एंड ऑनेस्टली पता है रिलेशनशिप्स क्यों फेल करते हैं, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस. हाँ मतलब है पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन रिसर्च भी यही कहता है कि मोस्ट रिलेशनशिप्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे एज द मंथ्स एंड द ईयर्स गो बाय हमारे पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं. जब हम रिलेशनशिप शुरू करते हैं हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बस कुछ चंद घड़ियाँ प्यार की बिता लें एक साथ, थोड़ा नॉटी हो जाए, थोड़े पाँच छः लाइक गाने वाने गा लें, कुछ क्रेजी कर लें, एंड दैट्स इट. बट जैसे ही रिलेशनशिप सीरियस होने लगता है हमारी डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं टिल इट रीचेज अ स्टेज कि हमारी डिमांड्स और उन डिमांड्स की जो रियलाइजेशन है और सप्लाई है वो इतनी कम हो जाती है, लाइक देयर इज सो मच ऑफ अ डिस्पैरिटी दैट द रिलेशनशिप इज बाउंड टू फेल. तो अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आपको लग रहा है कि यार शायद सारा होमवर्क मैं ही कर रही हूँ या शायद मेरा पार्टनर इज़ नॉट इनफ फॉर मी, जस्ट थिंक अबाउट इट वंस और अपने पार्टनर से एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना. क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारा पार्टनर ना हमारे दिमाग के सारे थॉट्स बस पढ़ लेता है हमारी शक्ल देखकर, पर ऐसा होता थोड़ी है. वी जस्ट हैव टू ओपन अ हार्ट एंड बी ऑनेस्ट विद आवर पार्टनर. ये चीज़ ट्राई करके देखो एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू, बिकॉज इन द पास्ट इट हैज़ रियली वर्कड फॉर मी. थैंक यू बोलना मत भूलना. एंड एक और चीज़, जिसके पास लव है उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है पता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी हंस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हेलो हेलो वेलकम। ये वो टाइम होता है जब आप और मैं मिल बैठते हैं और उस जमाने के गानों को, उस जमाने की बातों को एंजॉय करते हैं। सो आ गई आपकी प्यारी श्रेया और आज मैं एक हॉरर फिल्म लेकर के आई हूँ। अब आप इसको हॉरर फिल्म भी कह सकते हो, मिस्ट्री फिल्म भी कह सकते हो। यू नो एट दैट टाइम हॉरर और मिस्ट्री को बहुत अलग अलग नहीं देखा जाता था। थोड़ा सा हॉरर में मिस्ट्री होती थी और थोड़ी सी मिस्ट्री में हॉरर होता था। लेकिन एक बड़ी खास बात है इस फिल्म की। वेल दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म जो कि डैनी ने, हाँ जी, द एक्टर डैनी ने डायरेक्ट की थी। ये उनकी पहली और आखिरी डायरेक्टेड फिल्म थी। इसमें थे राजेश खन्ना और किम और इसमें थी अरुणा ईरानी। वेल, ये किस फिल्म की बात कर रही हूँ? मूवी का नाम है फिर वही रात। 1980 की ये फिल्म है। आपको ना आज उसके बारे में बताऊंगी। कम राइट बैक, मिल करके गप्पे लड़ाएंगे इसी फिल्म के बारे में। मैं हूँ श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಡಗನಜಿ.

0: चतुर घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुर, घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम

अच्छा, ऐसे बहुत कम दोस्त होते हैं जो एक्चुअली में आपकी मदद करने के लिए तैयार हों और उनके अंदर वो कैपेसिटी भी हो टू हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम्स। आई मीन, वैसे तो सारी दुनिया आकर के ज्ञान दे देती है, लेकिन ऐसे बहुत कम दोस्त हैं। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म फिर वही रात। 1980 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में थी किम। किम का ये डेब्यू फिल्म थी, राजेश खन्ना, अरुणा ईरानी। फिल्म वॉज मिस्टीरियस, फिल्म वॉज हॉरर फिल्म, थोड़ी सी हॉरर थी, ज़्यादा नहीं थी। इस फिल्म में डैनी जी ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, एंड दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म जिससे उन्होंने डायरेक्शन शुरू किया एंड ख़त्म भी कर दिया। मतलब इस फिल्म के बाद उन्होंने डायरेक्शन में कदम नहीं रखा। अब ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि डैनी जी जो थे ना, वो सेम काइंड ऑफ रोल्स कर करके थक गए थे। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे NNCP साहब, वो डैनी जी के बहुत ही क्लोज दोस्त थे। तो एक बार डैनी जी ने ना उनसे बस ऐसे ही शेयर किया कि अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मुझे ना एक्टिंग में मज़ा नहीं आ रही है। तो NNCP जनरली कोशिश करते थे कि उनकी फिल्में नए डायरेक्टर्स यू नो डायरेक्ट करें। ही यूज टू गिव चांसेस टू न्यू डायरेक्टर्स। और जब ये बात उनके खुद के दोस्त ने कह दी तो फिर कैसे नहीं हो। तो ये जो फिल्म है फिर वही रात, ये डैनी जी ने डायरेक्ट की है, एंड दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म दैट ही इज डायरेक्टेड। लेकिन ये करने का मौका उनको किसने दिया? उनके दोस्त NNCP ने। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, आज इसी फिल्म की बातें। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यंग टैलेंट को एक चांस देने में बिलीव करते थे प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, फिर चाहे वो एक्टर्स हो या फिर डायरेक्टर्स हो। सो डायरेक्टर्स तो उन्होंने कई सारे नए नए बनाए, जैसे कि सुभाष वाही, जैसे कि अशोक रॉय, सीपी दीक्षित। एंड जब बात हुई डैनी जी की, तो उनके साथ तो ऑलरेडी वो दो फिल्मों में काम कर चुके थे, वन वॉज चोर मचाए शोर एंड द अदर वन वॉज फकीरा। इन दोनों में उन्होंने डैनी के साथ काम किया था, मतलब ही वॉज अ प्रोड्यूसर एंड डैनी जी ऑफकोर्स फिल्म में थे। इसी के दौरान दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और डैनी ने बस ऐसे ही कहा कि मैं अब सेम तरीके के वही रोल कर करके थक गया हूँ, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे ना एक फिल्म डायरेक्ट करनी है। ऐसे में सिप्पी साहब ने कहा, अरे क्यों नहीं, मेरे पास एक स्क्रिप्ट तैयार है, ये एक हॉरर फिल्म होगी। फिल्म का नाम था फिर वही रात, तो ये तुम डायरेक्ट कर लो। अब पता नहीं, डैनी जी को शायद डायरेक्शन इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके बाद उन्होंने और कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की, ही वेंट बैक टू एक्टिंग। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, इस फिल्म की बातें होती रहेंगी, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शशि कपूर इस फिल्म में होने वाले थे, लेकिन फिर किसी ने कहा ना ना ना, काका यानी राजेश खन्ना का सिक्का चल रहा है आजकल बॉलीवुड में, यानी बड़े पर्दे पे, उनको लो। तो फिर क्या हुआ, इस हॉरर फिल्म में आ गए शशि कपूर की जगह राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म फिर वही रात। ये फिल्म में थे काका राजेश खन्ना अलोंग विथ किम, और किम का ना ये डेब्यू फिल्म थी। वेल, पहले इसमें शशि कपूर होने वाले थे, लेकिन उस टाइम पे जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, स्पेशली प्रोड्यूसर्स होते थे, वो ना मार्केट रिसर्च पूरी करके आते थे कि कौन सा एक्टर चल रहा है, किस पे पैसा लगाना है, और उनका बहुत से होता था इन द कास्ट ऑफ द फिल्म। सो इस फिल्म में भी भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें काका आए यानी राजेश खन्ना आए, नॉट शम्मी कपूर साहब। वेल, फिर क्या था, डैनी जी की ये ओनली डायरेक्टेड फिल्म थी, और उन्होंने काका जो कि उनके दोस्त थे, मतलब हल्के फुल्के वाले दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्ती नहीं थी, उनको पूछा एंड काका ग्रेट। दिस इज हाउ दिस हॉरर फिल्म वॉज मेड। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: आई आई आई आई आई आई

अरमान। लेकिन इस फिल्म के बाद से दोस्ती खत्म हो गई। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है फिर वही रात। 1980 की फिल्म है। 15th अगस्त 1980 को इसको रिलीज किया गया था। राजेश खन्ना थे इसमें, किम थी, एंड दिस वाज़ दी ओनली फिल्म जो डैनी जी ने डायरेक्ट की थी। ये फिल्म पे पैसा लगाने वाले यानी प्रोड्यूसर थे NN सिप्पी साहब, जो कि नए डायरेक्टर्स को चांस देते थे, और इस बार उन्होंने चांस दिया था अपने दोस्त डैनी को। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। ये बात ने एक दरार पैदा कर दी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो कि फ्रेंड्स हुआ करते थे यानी सिप्पी साहब के बीच में और डैनी जी के बीच में। वेल, डैनी जी ने तो ये तक कहा कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि इंडस्ट्री में आपका कोई दोस्त नहीं होता, सब एसोसिएट्स होते हैं। लेकिन फिर एक बार और दोनों ने एक साथ काम किया, वो कितने साल बाद था और क्यों किया, आई विल लेट यू नो। कम राइट बैक। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

18 साल लग गए इस दोस्ती को वापस जमने में, पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, पर मुझे समझ नहीं आया ये कैसी दोस्ती हो सकती है। आई मीन इमेजिन, तुम अपने दोस्त को कोई काम देते हो, कोई ड्यूटी देते हो, ओके, और उसमें उस ड्यूटी में माना कि तुम्हारा पैसा लग रहा है, पर तुमने उसको ट्रस्ट किया ना, इसलिए उसे दिया। अब उस ड्यूटी में अनइंटेंशनली अगर परफॉर्मेंस नहीं होती है, जिसमें उस बंदे का, तुम्हारे दोस्त का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो खराब हो, लेकिन नहीं होती है, लोगों को नहीं पसंद आता है, तो क्या आप अपने दोस्त से नाराज हो जाओगे? अब ऐसे ही कुछ हुआ था सिप्पी साहब के बीच में और डैनी जी के बीच में, फिर वही रात जिसकी आज बात कर रहे हैं ना, इस मूवी की 1980 में ये फिल्म आई थी, एंड ये डैनी जी की इकलौती डायरेक्टेड फिल्म थी। डैनी जी अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते थे, वो सेम रोल्स कर करके एकदम बोर हो चुके थे। एट दैट टाइम सिप्पी साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो सिप्पी साहब वैसे भी नए डायरेक्टर्स को मौका दिया करते थे, तो उन्होंने डैनी से कहा कि ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट आई है मेरे पास, इस फिल्म को तुम डायरेक्ट कर लो। Now what happened was that this film actually flopped at the box office. 15th August 1980 पे ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली, जबकि इसमें थे काका यानी राजेश खन्ना एंड किम। अब इसका पूरा ठिकरा जो है वो सिप्पी साहब ने डाल दिया भाई डैनी जी के ऊपर, कि उनको तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो इतनी अच्छी फिल्म नहीं बना पाता, ऑल ऑफ दैट। दोनों दोस्तों ने एक्चुअली में 18 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करी, एंड आफ्टर 18 ईयर्स उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स यू नो एक पिटारे में डाला और उसको बंद किया, एंड दे वर्क टुगेदर इन द फिल्म कॉल्ड सिलसिला है प्यार का। लेकिन इसमें 18 साल लग गए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोस्ती नहीं होती। आप अपने दोस्त से नाराज कितने दिन, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन तो जाके उसे झप्पी पा ही लेते हो, है ना? पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

डैनी जी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो बहुत बहुत नर्वस थे, एक्सट्रीमली नर्वस थे जब वो अपनी पहली और आखिरी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। वो फिल्म जिसके बारे में आज बात हो रही है, मूवी का नाम है फिर वही रात, 1980 की ये फिल्म, और इसमें थे राजेश खन्ना। अच्छा, डैनी जी ने कहा कि क्योंकि वो इस फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे थे, इसकी वजह से वो अपनी पहली फिल्म के डायरेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। ही सेड कि मैं दोनों में से एक काम कर सकता था, पर क्योंकि प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब, जिन्होंने ये फिल्म उनको दी थी, वो चाहते थे कि डैनी इस फिल्म में एक्टिंग भी करें, तो उनको वो डुअल काम करना पड़ गया। और क्योंकि वो डायरेक्शन में पहली बार उतरे थे, तो उन दोनों को ठीक से संभाल नहीं पाए। पुरानी जीन्स पे ना आज इसी फिल्म की बातें चलेंगी। वेल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया था दी एक्ट्रेस किम ने, पर उनको इंट्रोड्यूस किसने किया था ये अभी आपको बताऊंगी। कहानी बहुत मजेदार है। कम राइट बैक, मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

किम हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका डेब्यू ऑपोजिट राजेश खन्ना होगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ शशि कपूर ने इंट्रोड्यूस किया था प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब को किम से, और एनएन सिप्पी एक्चुअली लाइक्ड हर। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना है, मैं आपको उनके ऑपोजिट उतारूंगा। ये फिल्म थी फिर वही रात, जिसकी आज बात हो रही है, जो कि डायरेक्ट की थी डैनी जी ने। किम फिर मिली डैनी से इन द फिल्म कॉल्ड चोर मचाए शोर उनके सेट पर। एंड डैनी जी क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे फिर वही रात, दोनों में आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई तो किम एक्चुअली ब्लेम्ड हरसेल्फ। शी सेड कि वो ढंग से एक्टिंग नहीं कर पाई, उनकी पहली फिल्म थी एंड उनकी वजह से फिल्म फ्लॉप हुई। लेकिन ये बात सिप्पी साहब ने एकदम एक सिरे से नकार दी। ही सेड कि हम आपके साथ फिर से काम करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ यू द फिल्म फ्लॉप। बट इमेजिन वॉट, शी नेवर गॉट रिपीटेड इन एनी ऑफ द एनएनसीपीज फिल्म अगेन। पुरानी जीन्स पे आज फिर वही रात की बातें हो रही है। अभी गाना भी सुनाऊंगी, कम राइट बैक। मतलब मैं नहीं सुनाऊंगी, इस फिल्म का गाना सुनाऊंगी।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सोचो इस रोल के लिए वोटिंग हुई थी पुरानी जीन्स पे अपुश्रेया के साथ। एक कैंडिडेट थे जीतू जी जितेंद्र जी और दूसरे कैंडिडेट थे काका यानी राजेश खन्ना। वेल आज बात हो रही फिल्म फिर वही रात। वेल इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे डैनी जी और ये उनकी इकलौती डायरेक्टेड फिल्म बन के रह गई। इस फिल्म में पैसा लगाने वाले यानी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे NN सिप्पी साहब। Now what happened was कि सिप्पी साहब चाहते थे कि जीतू जी इस फिल्म में आए, लेकिन डैनी जी ने कहा कि जीतू जी ना फिल्म के रोल के लिए मैच्योर नहीं दिखते, वो चाहते थे कि काका इस रोल में आए। अब काका का ना बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड उस टाइम पे एकदम फ्लॉप चल रहा था, सो दोनों के बीच में थोड़ी जय हुई डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के बीच में। एट दैट टाइम दे डिसाइडेड कि चलो एक काम करते हैं, हम अपने ऑफिस के स्टाफ से वोट कराते हैं। एक्चुअली में जितना वहाँ पे कास्ट एंड क्रू था ऑफिस का, सबने वोट किया। दे हैड टू वोट अमंगस्ट जीतू जी एंड राजेश जी। एंड सोचो किसने जीता? ऑफ कोर्स इट वाज राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

एक्ट्रेस किम के फादर ने ना उनको एक वार्निंग दे रखी थी, एक अल्टीमेटम दिया हुआ था कि 6 महीने के अंदर तुम्हारा डेब्यू हो गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज इंडस्ट्री चेंज करना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है फिर वही रात। 1980 की फिल्म है, 15 अगस्त 1980 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना एंड किम थी इसमें, किम जिन्होंने अपना डेब्यू किया था इस फिल्म से, एक और जने हैं जिन्होंने इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, दैट वाज डैनी। सो किम के फादर ने ना उनको ये वार्निंग दे रखी थी कि 6 महीने के अंदर अगर तुम्हें कोई अच्छी फिल्म मिल गई तो फिर करना, अदरवाइज अगर 6 महीने क्रॉस कर जाते हैं यू स्टिल डू नॉट हैव अ गुड फिल्म इन योर यू नो इन योर लिस्ट तो फिर आपको प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, इंडस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी। ये बात किम ने बताई थी अपने दोस्त शशि कपूर को। शशि कपूर उनको ले गए NN सिप्पी साहब के पास, और सिप्पी साहब डैनी जी के पास जो कि फिल्म बना रहे थे फिर वही रात। सो सिप्पी साहब ने शशि कपूर से प्रॉमिस किया था कि उनके दोस्त के लिए वो एक अच्छा लॉन्च प्लान करेंगे। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता था कि शी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी लॉन्च्ड Right opposite, none other than Kaka, yani Rajesh Khanna. Purani jeans pe, main hoon Shreya, come right back.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

भाई उस जमाने में सोशल मीडिया पे भले ही ट्रोलिंग ना हो लेकिन फिल्मी मैगजीन्स कम नहीं होती थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड किम, उनकी ये डेब्यू फिल्म थी जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ। इंडिया की हॉरर फिल्म जिसका नाम था फिर वही रात। इट वॉज डायरेक्टेड बाय डैनी जी एंड इसमें मेन लीड में थे राजेश खन्ना और उनके ऑपोजिट मैदान में पहली बार उतरी थी द एक्ट्रेस किम। सो उनके लुक्स को लेकर के रादर उनके एक्सप्रेशंस को लेकर के बहुत सारा क्रिटिसिज्म उनको मिला था। फिल्मी मैगजीन्स ने लिखा था, फिल्मी पंडित्स ने बोला था एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ तो इंडस्ट्री में बहुत स्प्रेड हो गया था दैट शी इज एक्सप्रेशनलेस। लेकिन जब किम ने इंटरव्यू दिया एक मैगजीन को तो उन्होंने कहा कि उनके डायरेक्टर डैनी चाहते थे कि उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ऐसे रहें, एकदम डेड पैन की तरह रहें। सो शी डिड व्हाट द डायरेक्टर आस्क्ड। अब भाई दोनों में कौन सही था ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इस फिल्म के बाद किम जी को काफी मशक्कत करनी पड़ी टू गेट अनदर फिल्म इन हर किटी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ फिर वही रात, इसकी बातें चलती रहेंगी। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट।
5: ब्रेकिंग न्यूज़, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
6: हिट गाना।

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पे हाफ श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, याने लेट्स हिट द हाईवे। वेल, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज का हाईवे हिट आप मुझे डेडिकेट करना चाहते हो, क्योंकि वो है रवि साहब की आवाज है। मुझे जाने दो, अगर अभी नहीं गई तो कल मिलने फिर कैसे आऊंगी। बट यस, इन केस अगर आपको मुझसे बात करनी है, वन टू वन कॉन्वर्सेशन करना है जहाँ आप भी मुझसे कुछ बोल सकते हो, रेडियो पे तो सिर्फ मैं ही चपड़ चपड़ करती रहती हूँ। सो फॉर दैट, फेसबुक और इंस्टा पे माई हैंडल इज RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREYA विद लव। ऑन दैट नॉट, गुड नाइट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है पता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी हंस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कंपैरिसन करना हमारे इमोशनल वेलबींग को कैसे अफेक्ट करता है, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जब अभी एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं और ये जो पूरा माहौल जो मैंने आपको बताया ऐसा है, मोहल्ले वाले भी पूछ रहे हैं, टॉपर्स की लिस्ट छप गई है, सब जगह पेपर हो, मोहल्ला हो, ऑनलाइन हो, सब जगह यही देख रहे हैं। बुआ का मैसेज आया हुआ है, पापा नाराज़ बैठे हैं, मम्मी बात नहीं कर रही है, बेटा खुद अंदर कमरे में बंद है, उस समय उस वक्त उनको क्या कहूँ मैं?
4: नहीं, यू विल ऑल्सो सी लॉट ऑफ पेरेंट्स हु आर सेलिब्रेटिंग देयर चिल्ड्रन इवन इफ दे हैव गॉट 60 एंड 70।
3: यस,
4: आपने देखे ऐसे पेरेंट्स?
3: लेकिन ज्यादा कम होता है, हर परिवार में नहीं होता।
4: होते तो है ना, होते तो हैं, तो वो अपने बच्चे की सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बाकी मोहल्ले वाले भी सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम बाहर की नहीं है, प्रॉब्लम है जब घर वाले उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बच्चे की खुशी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, पेरेंट्स खुश नहीं है, बच्चा खुश नहीं है, तो नेचुरली वो एनवायरमेंट सब तरफ जाएगा ना। पहले किस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना है, पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना है। इधर तक एक्सेप्टेंस आ गई, उसके बाद बहुत फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं। पर अगर हम यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारी एक्सेप्टेंस किस पर डिपेंडेंट है, दूसरे क्या सोचते हैं,
3: वैलिडेशन पे।
4: हमारा जो समाज है उसकी मेन चीज है कि अगर दूसरे वाह वाह करते हैं तो ठीक है, लेकिन आई नो दैट माई चाइल्ड इज परफॉर्म्ड मोर देन हिज कैपेसिटी। एज अ पेरेंट मुझे खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, मिल करके सेलिब्रेट करना चाहिए, तो बाकी सब भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। आप कभी भी नोट करना, जो आप कर रहे हैं अगर आपको उस पर फेथ है
3: तब सब सही है,
4: और आप उस चीज को जॉयफुली करते हैं, लोग उसको पसंद करना शुरू कर देंगे।
3: बिल्कुल, बहुत सही।
4: कोई बहुत अच्छी चीज भी होगी पर आप ही क्रिप करते हैं और आप ही क्रिटिकल हैं, तो वो भी उसके अंदर फॉल्ट ढूंढना शुरू कर देंगे।
3: बिल्कुल,
4: जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए हर पेरेंट को अपने बच्चे के प्रति जो दृष्टि है उसको बहुत ऊंचा बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने को उन कलर्स से आइडेंटिफाई करता है जिस रंगों से पेरेंट्स उसको देखते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी
3: है। बहुत बढ़िया, तो हमें सिर्फ याद रखना है कि हमारी काबिलियत जो है वो एक स्कोर शीट मार्कशीट से नहीं नापी जा सकती है। टॉपर्स की लिस्ट तो लोग भूल जाएंगे थोड़े दिनों में, तो हमको भी यही याद रख के आगे चलना है कि ये भी थोड़े दिन बाद लोग भूल जाएंगे। जैसे सिस्टर कह रही है, आप लगे रहिए, आगे अच्छा ही होगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पेरेंट्स के लिए ये समझना क्यों जरूरी है कि सक्सेस और फेलियर दोनों ही लाइफ का हिस्सा है, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कई बार क्या होता है कि परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं और एक जो लेट्स से पेरेंट है, माँ बाप की बात हो रही है इस वक्त, माँ जो है वो समझती हैं, वो प्रोत्साहन देती हैं और लड़की को या लड़के को बोलती हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे नंबर से तुम आइडेंटिफाई नहीं होते हो जब एग्जाम के रिजल्ट आते हैं, इट्स ओके, सब सही होगा, सब अच्छा होगा। और लेट्स से दूसरा जो पेरेंट है, लेट्स से इस केस में पापा हैं, वो कहते हैं नहीं, तुम नहीं समझती हो, जिंदगी में मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे पढ़ने के लिए एग्जाम में तुमको अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ लोगों के लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत परेशानी इसी दौर में आती है, तो ऐसे केस में वो पेरेंट्स को क्या कहें? चल, एक पेरेंट अलग सोच रहा है, दूसरा पेरेंट भी अलग ही राह पे चल रहा है।
4: दो जने हैं, अलग तो होते हैं, बट आई थिंक अगर कोई एक भी है जो आपके ऊपर विश्वास रखता है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो इनफ। और अगर कोई एक भी नहीं है
3: जी,
4: तो आप खुद वो एक बन जाए।
3: अरे वाह, क्या बात है। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो होते हैं 14, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में, इतने शायद इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं कि अपने आप को बोल सकें कि चलो कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप जो हैं वो जो भी बोल रहे हैं मैं स्ट्रांग होता हूँ।
4: इसीलिए तो हम ये शो कर रहे हैं। I understand, ये सच बात है, लेकिन हमें बहुत बच्चे भी सुनते हैं।
3: जी बिल्कुल।
4: वो बच्चे भी अगर सुन रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे सफल लोग, कितने ड्रॉप आउट्स हैं, कितने को रिजेक्शन मिला, कितने उन्हें फेलियर्स किया, कितने हैं जिनके बुक्स इतनी इतनी बार रिजेक्ट हुई, उनके आइडियाज रिजेक्ट हुए, कोई भी नहीं था जो उनके ऊपर फेथ रखता था, कोई भी नहीं। धीरे धीरे इतने रिजेक्शंस के बाद तो उनकी फैमिली जिसको फेथ था ना उनके ऊपर,
3: वो भी शायद
4: वो फेथ भी धीरे धीरे टूट गया और उन्होंने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया। बट वो सफल क्यों हुए? क्योंकि एक ही जना था जिसको उनके ऊपर फेथ था और वो
3: खुद।
4: एंड वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। द अदर डे ऑल्सो आई वॉज रीडिंग, आपने भी सुना होगा डिज्नी की जो वॉल्ट डिज्नी की कहानी है, कितने समय तक उन्हों के जो आइडियाज थे वो रिजेक्ट होते चले गए, एक आध बार बैंकक्रप्ट भी हुए, लेकिन फाइनली क्योंकि उनको अपने ऊपर फेथ था, इट क्लिक्ड। ऐसे हम हैरी पॉटर के राइटर के बारे में सुनते हैं, 12 टाइम्स शी वॉज रिजेक्टेड। सो इफ यू सी अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, वो अफेक्टेड नहीं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता उनके ऊपर बाकी लोग क्या सोचते हैं, उनको अपने पर विश्वास होता है। ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि थोड़ा रिजेक्शन एंड फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, वो केवल आपको आगे बढ़ा रहा है। फेलियर इज नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस।
3: ये बहुत जरूरी है समझना।
4: जी, वो ऑपोजिट नहीं है, इट इज जस्ट यू नो पॉइंटिंग इन अनदर डायरेक्शन। ये वर्क नहीं हुआ अभी ये करो, ये वर्क नहीं हुआ अभी ये करो, बट एक बार ही अगर आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो गया ना, देन आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या रियलाइजेशन हमारी लाइफ को एक नई डायरेक्शन और पर्पस दे सकता है? आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कई बार क्या होता है जब आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराने जाते हैं तो लेट्स से डेंगू या मलेरिया का टेस्ट है उसमें कुछ आता है रिजल्ट, तो कई बार डॉक्टर्स कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव है, ये सही नहीं है, एक्चुअली हमको फिर से टेस्ट कराना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है। तो मैं एक दोस्त के साथ बात कर रहा था और वो कह रहा था कि यार हम भी लाइफ में ना बहुत फॉल्स पॉजिटिव होते हैं, हर चीज़ में ये सही है, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हम बोलते रहते हैं अपने आप को, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है ज़िंदगी में, हमको उनसे गुजरना पड़ता है। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे ऐसे लोगों की जो बहुत फेलियर के बावजूद आगे बढ़ते रहे, उनको खुद की काबिलियत पर बहुत भरोसा था। लेकिन यहाँ बात आ जाती है कि कहाँ कॉन्फिडेंस इसको कहा जाए और कहाँ वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप वो कार्य कर रहे होते हैं आपको पता नहीं होता कि कहाँ जाएगा। हाइंडसाइट में आपको समझ में आता है ये सही था या गलत था, तो उस वक्त जब आप अपना काम कर रहे हैं और तमाम दरवाजे बंद होने के बावजूद आप लगे हुए हैं कि नहीं मैं ये करूँगा, चाहे आपको क्रिकेट खेलना हो, किताबें लिखनी हो, फिल्मों में ट्राई कर रहे हैं, जो भी आपका फील्ड हो, कब आपको गिव अप कर देना चाहिए कि ये नहीं अब लेट हो गया, मेरे लिए नहीं होगा, और कब आपको पता होना चाहिए कि नहीं हो जाएगा, मैं तो यही करूंगा।
4: आई थिंक इंट्यूटिवली यू जस्ट नो, यू नो समटाइम्स क्या होता है कि वो कहते हैं कि सही टाइम पर वो चीज क्लिक हो जाती है, तो वो शायद टाइम नहीं आया होता जब बार क्लिक हो रहा होता, पर इंट्यूटिवली आपको पता होता है यू आर गुड एट इट। तो जब तक आपको इस चीज पर फेथ है कि यू आर गुड एट इट और केवल सही समय नहीं है क्लिक हो जाएगा किसी को, तब तक आपको मेहनत करनी चाहिए। बट अगर आपको इस चीज की रियलाइजेशन है दैट यू आर नॉट गुड एट इट, उस चीज़ में अपने को धोखा नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अब क्रिकेट में कई बार क्या होगा, आप एक एज होती है कि इतने समय तक आपको नेशनल्स खेल लेना चाहिए, इतने समय तक आपको उस टीम के अंदर होना चाहिए। इफ़ यू अराउंड 23 और आप वो जो बेंच मार्क्स थे वहाँ तक आपने नहीं क्रॉस किया, देन आई थिंक उस फिर वो एक समझदारी होगी ये रियलाइज करना कि लेट मी प्ले इट एज एन हॉबी, छोड़ने के तो कोई बात नहीं है, पर मे बी आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल टू प्ले फॉर द कंट्री।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: दूसरों से कंपेयर करने के बजाय उनसे इंस्पायर कैसे हो सकते हैं, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये जो रियलाइजेशन होती है ना सिस्टर, कई बार इंसान में नहीं होती है, क्योंकि उसको लगता है मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके आसपास जो खेलने वाले हैं वो आपसे कई गुना बेहतर हैं। तो इट्स कभी कभी अबाउट लक, कभी इट्स अबाउट भगवान पे छोड़ दिया, इट्स नॉट जस्ट माई टैलेंट। तो ऐसे केस में कब अपने आप को बोले नहीं भाई, टाइम टू डू समथिंग एल्स।
4: दैट्स व्हाट आई सेड कि आप जो बेंचमार्क, बाहर के भी तो कुछ बेंचमार्क्स होते हैं कि नहीं होते हैं, आप अपने से तो नहीं डिसाइड कर सकते ना। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिकेट की बात करी, कई एग्जाम्स होते हैं उसमें एक एज लिमिट होती है, आप 23 के बाद नहीं दे सकते,
3: आर्मी के अंदर कुछ,
4: अगर आप उस बेंचमार्क में नहीं फिट हो रहे हैं तो उस इट्स आपको अपने को कहना होता है ना कि मे बी दिस इज नॉट फॉर मी। अगर फिर आप अपने को धोखा देते जाएंगे तो आप अपना ही समय खराब करें। और इसीलिए फिर ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि अगर ये खुद रियलाइज नहीं करते तो फिर समय इनको रियलाइज कराएगा। ये लाइन कहाँ से आती है ना कि भाई आप खुद नहीं जागेंगे तो फिर समय तो ऐसा आता ही है कि फिर आपको रियलाइज कराएगा। तो समय से पहले उस चीज को रियलाइज करना जरूरी है। दो चीजें होती हैं, एक है कि यू आर गुड यू नो, बट जिस समय पर आपने चाहा कि अभी अभी हो जाए वो नहीं हुआ तो आप डिसहार्टन होकर के गिव अप कर देते हैं। आप अपने को सेकंड चांस भी नहीं देते, आप अपना बेस्ट भी नहीं देते। एक है आपने अपना बेस्ट दे दिया पर जैसे आपने कहा कि और बहुत सारे थे जो शायद आपसे भी बेहतर थे, तो आपने रियलाइज किया यू आर नॉट चीटिंग योर सेल्फ सेइंग कि आई हैवंट गिवन माय बेस्ट। आप चीट भी कर सकते हैं, कभी कभी आप कहेंगे नहीं नहीं आई वॉज लेजी, आई हैवंट गिवन माय बेस्ट। यू नो यू हैव गिवन योर बेस्ट, इससे ज्यादा है ही नहीं, दिस इज इट, यू आर वेरी ऑनेस्ट विद यू। हम सबसे ज्यादा झूठ अपने से तो बोलते हैं और अपने से ऑनेस्ट होने के बाद फिर बाहर की सिचुएशन को देख करके रियलाइज करना कि आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू रीच अप टू दैट मार्क। अब ये है डिसाइड करने का कि मुझे इसको हॉबी की तरह रखना है या मुझे इसको करियर बनाना है या मुझे दूसरा करियर पाथ चूज करना है। वो फिर ऑनेस्टी हर एक को अपने साथ रखनी जरूरी है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कब किसी चीज को पकड़ कर रखना चाहिए और कब उसे छोड़ देना चाहिए, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, ये कई बार हमने पहले भी बात की, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि कभी कभी क्या होता है जहाँ एज लिमिट नहीं है। यू नो, फॉर एग्जांपल फिल्म में, बम्बई में कई बार मैं, बहुत लोग आते हैं वो सिर्फ एक्टर बनना चाहते हैं, मैं देखता हूँ सालों तक मेहनत करते रहते, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और उन्हीं के साथ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो शायद 15-20 साल स्ट्रगल के बाद निकल गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, इमरान खान थे एक ज़माने में, इरफान पठान थे, पंकज त्रिपाठी, ये 20-30 साल से मेहनत करते करते अब निकल रहे हैं कहीं, पिछले 5-7 साल से। तो उनके सामने एग्जाम्पल्स भी हैं, दे आर नॉट कन्वेंशनल। एक तो होता ना कि भाई बच्चन साहब जैसी आवाज़ होनी चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, अक्षय कुमार जैसे आपको फाइट आना चाहिए, सलमान खान जैसे, सो देर आर ऑल वेरी अनकन्वेंशनल पीपल। एंड उनको देख के भी बहुत सा, एक तो होता है कन्वेंशन है यही है, हीरो मोड में जाएगा, ऐसा जाएगा। जो अनकन्वेंशनल होते हैं उनके लिए कैसे डिसाइड हो कि कब तक करना है और कब छोड़ देना है, क्योंकि बहुत मुश्किल है डिसाइड करना।
4: सफल होना और टॉप में जाना वो अलग बात है। इफ यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आप कुछ कर रहे हैं लेकिन आप टॉप तक नहीं पहुंचे या जितना आपने सोचा था उतना नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप उतने हिट नहीं हुए, बट अगर वो आप एंजॉय कर रहे हैं, आप उसको जॉयफुली कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, मे बी आप फाइनेंशियली उतना अर्न नहीं कर रहे हैं जितना दूसरा अर्न कर रहा है, पर आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप करें ना। हर एक तो नंबर वन नहीं हो सकता। इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो नंबर 10 पर है वो अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहा है, या वो तभी एंजॉय करेगा जब वो नंबर 1 पर जाएगा। सो दैट इज अनदर थिंग। वन इज वो अपने को फेलियर देखते हैं, वो अलग बात है। बाकी अगर इंडस्ट्री में 100 एक्टर हैं, 100 के 100 तो टॉप पर नहीं हो सकते, तो जो टॉप पर नहीं है वो सारे फेलियर्स हैं।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं,
4: उनको आप क्या कहेंगे?
3: लेकिन उन्होंने कुछ मकाम तो अपना हासिल किया, कुछ अच्छे किरदार किए, कुछ उनको प्रोजेक्ट्स मिले। बहुत सारे लोग हैं 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बन पाया।
4: फिर ये उनकी चॉइस होगी। सी, वी कांट टेक अ डिसीजन फॉर देम। किसने कितना प्राप्त किया है और वो उससे कितना सैटिस्फाइड है, वो कंटिन्यू करना चाहता है कि छोड़ना चाहता है, वो हम तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। कई लोग होते हैं वो कहते नहीं, मुझे करनी तो एक्टिंग ही है,
3: बस यही करना,
4: क्योंकि मुझे तो किसी और चीज में मजा
3: नहीं आता,
4: आता ही नहीं है। मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, मेरे से कुछ होता भी नहीं है, मुझे कुछ आता भी नहीं है, और मेरी दिल भी किसी में नहीं लगती। मैं थोड़ा बहुत भी करता हूँ लेकिन मैं उसके अंदर
3: बहुत खुश हूँ,
4: मैं बहुत खुश हूँ। मैं थिएटर भी करता हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे 2-4 रोल्स भी मिल जाते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो इतना भी नहीं सोचा था कि मैं करूँगा, लेकिन आज मुझे इतना भी मिल रहा है, आई एम एबल टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर फ्रॉम वॉट आई रियली लाइक एंजॉइंग, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम कम्फर्टेबल। तो आप उसको गलत तो नहीं कह सकते?
3: गलत नहीं कहेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, एक छोटी सी चीज ऐड हो जाती है जो बहुत लोग नहीं सोचते इसके बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मुझे घर पैसे भेजने हैं, मेरे पे लेट्स से कोई डिपेंडेंट है, तो अब मैं मस्त मौला हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ।
4: नहीं, वो गलत है। दैट इज व्हाई आई सेड कि वो व्यक्ति को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करते हैं और आप अपने में मस्त हैं कि मुझे तो चलता है, नहीं, वो चीज बिल्कुल गलत है। अगर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम में सिंपल लाइफ में, कम जरूरतों में कंफर्टेबल है, क्योंकि ये उसको करने में उसको जॉयफुल लगता है, बट ही इज नॉट हार्मिंग एनीबडी। उनके उस जीवन जीने के तरीके से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, देन इट इज कंफर्टेबल। लेकिन अगर किसी को नुकसान पहुंचता है, अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन यू शुड थिंक अबाउट डूइंग समथिंग एल्स।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरी वाइफ की मैं वाइफ हूँ पंकज त्रिपाठी के स्टेटमेंट के पीछे छुपा लाइफ लेसन क्या है, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: पंकज त्रिपाठी ने इनफैक्ट ये कहा था एक बहुत अच्छे फोरम में, वो कहता है मेरी बीवी की मैं बीवी हूँ क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे तब सपोर्ट किया और उसने कहा तुम लगे रहो, तुम बहुत अच्छे हो, मैं कमा के घर चलाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। तो वो बहुत कृतज्ञ हैं अपनी बीवी की तरफ।
4: See, you have an example.
3: जी।
4: अब उसमें देखो दोनों चीजें होती हैं। अगर आप किसी को सपोर्ट भी करते हैं, आप कुछ टाइम फ्रेम कहते हैं हम 5 साल ट्राई करेंगे, जो करने वाला है जो कहता है मैं सपोर्ट करूंगा उसको भी इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये क्लिक हो भी सकता है
3: नहीं भी हो सकता है।
4: नहीं भी हो सकता है, इनके केस में हुआ, कई कहानियां ऐसी भी होंगी कि नहीं भी हुआ होगा, लेकिन ये दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था। कई चीजें आप लाइफ में इसलिए भी करते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जीवन भर रिग्रेट रहेगा।
3: ये बहुत सही कहा कि फैमिली के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ज्वाइंट डिसीजन होना चाहिए,
4: ज्वाइंट डिसीजन होना चाहिए। और फिर भी अगर नहीं क्लिक हुआ, ऐसे भी तो कई केसेस होंगे, आपके मन में रिग्रेट
3: नहीं होना चाहिए।
4: हमने मिल करके डिसीजन लिया था, हमने मिल करके किया, अच्छा अभी नहीं हुआ, What is the next right move?
3: बहुत बढ़िया, very good.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हार्ट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक और सवाल आया है सिस्टर श्रेया। दीपा लिखती हैं सिरसी से, नमस्ते सिस्टर श्रेया, मेरा एक सवाल है कि मैं अपनी माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। भाई है लेकिन सिर्फ नाम के लिए। जनवरी में मेरे पापा एक्सपायर हो गए और मेरे भैया माँ का ख्याल नहीं रखते, बात भी नहीं करते, उनको अकेला छोड़ के दूसरे गांव में रहते हैं, और मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया हो। मुझे मायके नहीं भेजते हैं, मैं अपनी माँ का कैसे ख्याल रखूं?
3: कभी कभी लाइफ में जब इस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं तो हमें अपना पार्ट बेस्ट प्ले करना होता है। हम हर सोल के पार्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं उठा सकते, लेकिन आई हैव टू प्ले माय पार्ट एक्यूरेटली, और उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ की होती है। इन लॉज में जहाँ हम मैरिड हैं वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन पेरेंट्स भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो इसीलिए जितना आपसे हो सकता है आप बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर आपके इन-लॉज और जो आपकी फैमिली है वो आपसे कंटेंट होंगे तो ज़रूर वो आपको इधर भी सहयोग देने की छुट्टी देंगे। एंड दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज से कि रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली सहयोग मिलता है, हमें सहयोग मांगना नहीं पड़ता है। तो हमारे जो इन-लॉज हैं जहाँ पर हम मैरिड हैं वहाँ भी हम सबको संतुष्ट रखें। उसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके अनुसार चलें, पर उसका ये मतलब है कि वहाँ भी हम अपना पार्ट बहुत अच्छे से बजाएं। जो हमारा रोल है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बहुत ऑनेस्टली बहुत शुभ भावना के साथ अगर वो पार्ट बजाते हैं तो उनों का भी हमें सहयोग मिलता है। एट द सेम टाइम अपने मदर का भी ध्यान देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट दोनों को बैलेंस करना। परमात्मा एक बहुत सुंदर चीज़ कहता है, जहाँ बैलेंस है वहाँ ब्लेसिंग्स मिलती हैं। पर कभी कभी हमारे अटैचमेंट के कारण या हमारी बिटरनेस के कारण हम बैलेंस नहीं कर पाते। तो इसलिए अंदर में बिटर नहीं हो, किसी से आप नफरत नहीं करें, आप बैलेंस बना करके रखेंगे तो आपको सहयोग भी मिलेंगे और आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे। बाकी ब्रदर क्या कर रहा है उसका इतना वरी नहीं करें। हम गाइड कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। कई बार जब हम अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले करते हैं तो भी सामने वाले को अंदर में आता है कि नहीं, मुझे भी कुछ सहयोग देना है। एक्सपेक्टेशन रखने से हम हर्ट होते हैं, इसलिए एक्सपेक्टेशंस न रखकर आप अपना पार्ट अच्छे से बजाएं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

लगन खिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है

रू या शाम कन्हाई, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर। देश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। कभी कभी ये भी होता है कि सामने वाला, अगर मैं ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं कि मुझे इस बात से ज्यादा फर्क ना पड़ रहा हो कि सामने वाला क्या बोल रहा हो, मैं अपने मन में गीत गा रहा हूं, मैं अपने पे विचार पे कंट्रोल कर रहा हूं, तो सामने वाला कभी कभी चिड़के भी कह सकता, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जो भी बोलता हूँ, तब क्या किया जाए?
2: अभी वो उनकी प्रॉब्लम है। नहीं, ये बात लेकिन बिल्कुल सही है, बिकॉज सी अ लॉट ऑफ टाइम पीपल आर ट्राइंग टू प्रोवोक अस। वो जब अपनी बहुत अपसेट होते हैं तो वो हमें इंसल्ट करके या क्रिटिसाइज करके थोड़ा सा प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, और अगर हम प्रोवोक हो जाते हैं तो उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है
1: जी।
2: और अगर वो हमें नहीं कंट्रोल कर पाते, अगर हम इंटरनली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, इट इज नॉट दैट आई डोंट वॉन्ट टू चेंज, इट इज जस्ट कि अगर आप गलत तरीके से बात करते हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं होते, वो मेरे मन की मास्टरी है, वो मेरा एफर्ट है, आई चूज टू स्टे काम। और ये हर फील्ड में होता है, आज क्रिकेट के फील्ड में कोई स्लेजिंग कर रहा है, आज ऑफिसर्स में कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, निंदा कर रहा है, आज कहीं पर कोई बॉस डांट रहा है, तो हमें अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ तो बिल्ड करनी पड़ेंगे ना। अगर हम वो बिल्ड नहीं करेंगे तो हम डिस्टर्ब भी होते रहेंगे। तो हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, आपकी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अब जब आप मुझे कंट्रोल नहीं कर पाते और प्रोवोक नहीं कर पाते तो आप और अपसेट होते हैं, पर ये तो इमोशनली वीक हुआ ना, सामने वाला इमोशनली वीक हुआ, इसलिए ये तरीका ठीक नहीं है।
1: तो ये सोचने के सामने वाला इमोशनली वीक है, वो बेचारा मन से बीमार है, और उसके प्रति पॉजिटिव सेंटिमेंट भेजिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए।
2: पहले अपने को उसकी एनर्जी से डिटैच करना जरूरी है। हम किसी की हेल्प तब कर सकते हैं
1: जब हम स्ट्रॉन्ग है,
2: जब हम स्ट्रॉन्ग है। और कोई भी अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, जोर जोर से बात करता है, वो पोजीशन में बड़ा हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब पोजीशन के पावर में बड़ा हो सकता है, पर इनर पावर में वो बहुत
1: वीक है,
2: सोल पावर में वो बहुत वीक है। नहीं तो वो बहुत काम से, डिग्निटी से, ग्रेस से बात करेगा। बात करें, बात ना करें ऐसा नहीं है, जो कहना है कहें, लेकिन ग्रेस डिग्निटी जरूरी है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो लाइफ में वाईफाई कभी भी वीक हो सकता है, लेकिन सुबह सुबह मूड के बार्स जो है ना वो फुल होने चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में शुरू हो चुका है तुम्हारा फेवरेट शो, बोले तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और यहाँ पे तुम्हारी कॉफी स्ट्रांग होगी, प्लेलिस्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगले कुछ घंटों तक मैं और तुम साथ में रहने वाले हैं, व्हेदर यू लिसनिंग टू मी फ्रॉम एनीवेयर। यहाँ पे तुमको मिलने वाला है बॉलीवुड, थोड़ा सा यहाँ वहाँ की बातें, थोड़ा सा ज्ञान, अ लॉट ऑफ मस्ती, अ लॉट ऑफ मिर्ची, एंड बेसिकली दिस शो इज लाइक दैट फ्रेंड ऑफ योर्स जो सुबह सुबह फोन करके बोलता है यार उठ गया कि नहीं उठ गया, चल यार कहीं घूमने चलते। और हाँ, मुझे अपनी मॉर्निंग्स में इंक्लूड करने के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन कहाँ से इंक्लूड करो ये भी मुझे बता सकते हो। इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। वॉइस नोट भेज सकते हो तुम यहाँ पर, या फिर हेलो हाय का टेक्स्ट मैसेज भी। अभी के लिए चलाती हूँ तुम्हारे लिए मिर्ची दैट बैंगर्स राइट हियर राइट नाउ, मिर्ची मॉर्निंग्स पर। दिस इज प्रिसिला विद यू, गुड मॉर्निंग।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and this is Mirchi Mornings. So, तुम्हारा जॉब सिक्योर है कि नहीं है, let's talk about that. So all the New Jersey professionals listening to me right now, this one's for you. तुमने सालों तक अपना करियर बनाया है, promotions chase किए हैं, experience collect किया है and suddenly AI आ गया है, technology change हो गई है, layoffs की news आने लगी है and office में कोई newbie Gen Z आकर तुम्हें नए software का tutorial दे रहा है. Rude awakening है, लेकिन awakening तो है. लेकिन द क्वेश्चन इज, आर यू बिकमिंग इररेलेवेंट और यू आर जस्ट ओवरड्यू फॉर अ करियर अपग्रेड? अगर ऐसे ही सवाल तुम्हारे मन में भी आ रहे हैं तो इस 27th ऑफ सितंबर को, यानी कि एग्जैक्टली दो दिन के बाद, शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठ, 4-time TEDx स्पीकर्स, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स एंड मल्टी अवार्ड विनिंग करियर कोचेस आ रहे हैं राइट हियर राइट नाउ न्यू जर्सी में फॉर एन इन पर्सन करियर ग्रोथ वर्कशॉप एट शेरेटन एडिसन. और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देव हेल्प 1500+ मिड करियर प्रोफेशनल्स वर्क टुवर्ड प्रमोशंस, बिगर अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रॉन्गर लीडरशिप प्रेजेंस, बेटर विजिबिलिटी एंड सैलरी ग्रोथ विद रिपोर्टेड रेजेस रेंजिंग फ्रॉम 50% to 180%. अगर ये सब तुमको चाहिए, बेसिकली इट्स टाइम टू स्टॉप प्लेइंग करियर डिफेंस एंड गेट इन टू द ग्रोथ स्पीड लेन. So New Jersey 27 September की डेट बुक कर लो. Build that before after career story, not just another before after Instagram story. Register करो अभी की अभी जाकर playitfull.com/NJ पर. playitfull.com/NJ. And if you want to know more about it, you can DM me directly Insta or X पर. मेरा handle name है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. या व्हाट्सएप पर पूछताछ कर सकते हो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244. फटाफट से रजिस्टर करो टू बुक योर सीट एंड अभी मिर्ची दे आर बैंगर्स के लिए चलते हैं आगे. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लिख तगाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: इधर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
0: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
0: कौन है बता?
1: कोहली।
0: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
0: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: कभी कभी मुझे लगता है वेदर का जो मूड होता है ना, वो व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स की तरह होता है, क्योंकि वो सुबह सुबह और शाम शाम को ज्यादा एक्टिव रहता है और मिड में काफी मिड रहता है। व्हाट डू यू थिंक? मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट अराउंड 53 डिग्रीज फारेनहाइट, स्काइज आर क्लाउडी एंड नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट विंड इज मेकिंग इट फील लाइक 46 डिग्रीज फारेनहाइट। सो हाँ, टेम्परेचर कुछ और है और आज जैकेट की तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। डे टाइम में क्लाउड्स विल स्टिक अराउंड विद टेम्परेचर्स क्लाइंबिंग टू अ रिलेटिवली कंफर्टेबल 71 डिग्रीज फारेनहाइट and only about a 10 to 24% chances of rain. Winds around 16 miles per hour ke hisab se chal rahi hai and windy conditions could pick up around noon. Lekin shaam ke baad picture thoda sa filmy hone wala hai. Clouds jo hai, they will get thicker and the rain chances will jump to around 70%. Overnight low drops to around 57 degrees Fahrenheit aur ek important heads up hai, coastal flood warning is in effect through Saturday afternoon with possible coastal flooding around high tide. There's also wind advisory, so waterfront areas में थोड़ा सा extra caution बनाए रखना पड़ेगा। Humidity starts at 52% and rises overnight, and remember, feels like temperature जो है उसमें wind, humidity और sunlight तीनों की वजह से काफी कुछ हो सकता है। So तुम्हें feel कुछ और होगा, actual temperature कुछ और है। Carry a light jacket with you, carry an umbrella with you just in case, and wear your sun protection SPF 50++++ वाला। साथ साथ में कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड सारे वार्निंग्स को ध्यान में रखते हुए बाहर जाना इफ यू गॉट टू रन एरेंड्स या फिर कुछ काम से बाहर जाना है तो। सो इन शॉर्ट, आज का फोरकास्ट है क्लाउडी ब्रीजी, वार्मर देन यस्टरडे एंड रेन विथ कमिटमेंट इश्यूज। हो सकता है आए ना आए, कुछ कह नहीं सकते। लेट एंट्री हो सकती है बट 70% चांसेस ऑफ शोइंग अप है, इसीलिए ध्यान रख के बाहर जाना। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, time for updates from around the world on Mirchi Mornings. My name is Priscilla.
0: Mirchi, hour got three.
1: सबसे पहले इंडिया के तिहार जेल से एक अमेरिकन नेशनल और सिक्स यूक्रेनियन नेशनल्स को डिफॉल्ट बेल मिली है. मैथ्यू आरन वैन डाइक एंड द अदर्स हैव आल्सो बीन अलाउड टू ट्रैवल बैक होम फॉर अ मंथ सब्जेक्ट टू कोर्ट कंडीशंस. दे वर अरेस्टेड अर्लियर दिस ईयर इन अ केस इन्वॉल्विंग एलिगेशंस बाय द एनआईए लिंक्ड टू ट्रेनिंग आर्म्ड ग्रुप्स इन म्यांमार. नंबर टू पे वॉशिंगटन में शी जिनपिंग की यूएस विजिट के दौरान रिपोर्टर्स और सिक्योरिटी पर्सनल के बीच काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ. वीडियोज में पुशिंग एंड शविंग भी दिखाई दिया है. एंड लास्टली बॉलीवुड हैज लॉस्ट अ फेमिलियर फेस एक्टर मुश्ताक खान नोन फॉर वेलकम गदर एंड सेवरल अदर फिल्म्स पास्ड अवे एट द एज ऑफ 56. ही वाज बीइंग ट्रीटेड इन मुंबई आफ्टर हिज कैंसर रिपोर्टेडली रिटर्न्ड. हिज कॉमिक टाइमिंग एंड मेमोरेबल सपोर्टिंग रोल्स गेव ऑडियंसेस प्लेंटी ऑफ लव्स. मे ही फाइंड इटर्नल पीस. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine, fine, fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, आप बता
2: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: दिस इज रिगार्डिंग व्हाट,
2: बस आपका ना आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना, तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ, ट्यूसडे आप एक काम करो मिल लो मुझसे।
2: मैं ट्यूसडे किसी कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर, मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे,
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
2: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले फिर बताइए।
2: पहले अपना ही निकाल।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Mirchi Mornings and I'm Priscilla with you. And let's talk about Asian Games 2026.
2: Mirchi, watch it.
1: As of today, India has 19 medals in total. जिसमें से दो गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं. एंड इंडिया इज करंटली 15th ऑन द मेडल टेबल. लेटेस्ट गोल्ड आया है शूटिंग से. सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड जीता है और वो भी 484.6 पॉइंट्स के एशियन रिकॉर्ड स्कोर के साथ. दिस इज इंडियाज फर्स्ट एवर एशियन गेम्स गोल्ड इन दिस इवेंट. और शूटिंग ने एक और मेडल दिया है. ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, रुद्रांश पाटिल एंड नीरज कुमार ने मेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन टीम इवेंट में सिल्वर जीता है. और एक स्टोरी जो गोल्ड से भी ज्यादा वार्म है, सीमा कुमारी ने वुमेन्स 10,000 मीटर्स में ब्रॉन्ज जीतकर इंडिया का 16 ईयर वेट खत्म किया है. और सीमा ने कहा है उनकी मम्मी को अभी तक ये भी नहीं पता है कि वो एशियन गेम्स में कम्पीट कर रही हैं, वो भी एक फॉरेन कंट्री में. मम्मी को लगता है कि बेटी इंडिया में ही है, लेकिन सरप्राइज अपडेट, शी हैज बिकम एन ओलंपिक चैंपियन. एंड लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, इंडिया का टोटल मेडल टैली हो चुका है 2 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल्स, टोटल 19. एंड विद दैट, लेट्स सेलिब्रेट विद सम मिर्ची दर बैंगर्स राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: इधर मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और एआई अगर तुम्हारी जॉब ले जाएगा, इस बात का डर और खतरा तुम्हें सताता रहता है, तो ये बहुत ध्यान से सुनो। न्यूजर्सी के देसी प्रोफेशनल्स करियर में कभी वो मोमेंट आया है ना जब तुम्हें लगता है यार मैं अब नेक्स्ट क्या करूं, ले ऑफ्स हैपनिंग, एआई जो है वो गेम चेंज कर रहा है, यंगर कॉलीग जो है वो फुल स्पीड में भाग रहे हैं, और लिंक्डइन खोलते ही लगता है यार सब प्रमोट हो रहे हैं सिवाय मेरे। सो डोंट लेट दीस क्वेश्चंस डिफाइन योर 2027। इफ यू वांट टू डू समथिंग, देन सितंबर 27 को 4-टाइम टेडएक्स स्पीकर्स, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स एंड अवार्ड विनिंग करियर कोचेस शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठ, दे आर कमिंग टू न्यू जर्सी फॉर एन इन पर्सन करियर ग्रोथ वर्कशॉप एट द शेरिटन एडिसन। And they've worked with 1500 plus mid-career professionals, helping people accelerate promotions, strengthen leadership presence, increase visibility, and get this, achieve 50% to 180% salary raises. Basically, it's time to stop asking ki yaar mera career kis direction mein ja raha hai, and start asking mera career kitna fast ja sakta hai. New Jersey mein September 27th ko ye event ho raha hai. Iske liye register karna agar chahte ho, to jaldi se jao playitfull.com/NJ पर, that is playitfull.com/NJ. Build that powerful before and after career story, because your biggest career upgrade could become a legacy you leave for your kids. If you want to know more about this, then you can connect with me. Insta or X पर मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp का number है 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: तू भी
2: आस। इधर
1: हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट।

0: SG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो जी, टाइम आ चुका है पता करने का कि गोल्ड का क्या हालचाल चल रहा है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: Rajjewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,325. $4,325 पर ट्रे आउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। कल से मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड पर है और एक डेफिनेटली एंट्री पॉइंट बढ़ता है इन्वेस्टमेंट गोल्ड बार्स के लिए। 1 ounce, 10 ounce, 100 grams, किलो बार, PAM सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार अवेलेबल एट Rajjewels। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें Rajjewels.com के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
1: सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

माइंडेड। अरे मेरे जैसे डांस किसको आ जाए, कोई योगराज को मैं ही सिखा दे, वो घर पे आ जाए।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: इधर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर 3 अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज क्रिटिसाइज्ड सीएनएन एंड एमएसएनबीसी ओवर देयर कवरेज ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स व्हाइट हाउस विजिट। ट्रंप अलेज्ड द नेटवर्क्स स्किप्ड शीज अराइवल बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव हिम क्रेडिट। द नेटवर्क्स हैव हैड एन ऑनगोइंग डिस्प्यूट विद द व्हाइट हाउस ओवर मीडिया एक्सेस एंड कवरेज। नंबर 2 पर इंडिया में गोल्ड प्राइसेस हैव बीन फॉलिंग फॉर द फोर्थ स्ट्रेट सेशन अराउंड रुपीज 1.52 लाख पर 10 ग्राम, दैट्स रफली अराउंड $1700। एंड लास्टली फ्रेंच एक्टर एंड थिएटर डायरेक्टर आर्नोर डेनी हैज डाइड एट द एज ऑफ 43 आफ्टर चूजिंग यूथनेशिया इन बेल्जियम फॉलोइंग इयर्स ऑफ सिवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। हिज लॉयर सेड द डिसीजन वाज मेड आफ्टर कंसल्टेशंस विद 3 डॉक्टर्स। ही वाज नोन फॉर हिज थिएटर वर्क इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ ले लियजों डॉन ज़ेरो and Molière Le Femme Savante. And that is your Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Sunte raho mujhe aur connect bhi karo mujhse. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, and WhatsApp par mera number hai 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Ya bana. Burga, burga. La vida la burga. Mirci, burga.
1: हेलो,
2: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
1: तो सविता बोल रही हूँ।
2: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
1: क्या परेशानी है?
2: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
1: तो वो तो भरता ही है।
2: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
1: अच्छा,
2: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी,
1: हाँ हाँ,
2: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
1: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
2: प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
1: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
2: नहीं,
1: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
2: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
1: अच्छा,
2: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
1: अच्छा, कभी लेकिन नहाने को। मैं समझ रही हूँ।
2: हाँ, क्या समझ रही
1: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
2: डॉक्टर सविता,
1: हाँ जी,
3: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही देखा मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा।
1: अब नवीद आप बोलो आज कुकड़ू को।
3: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
1: कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. It's time for your Rashi Zone.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: It is यानी कि मेष राशि. Money matters are moving fast and small health hassles should settle down soon. लेकिन आज impulsive decision से थोड़ा सा distance रखो, okay? Lucky color is emerald green. Lucky number is 14. Taurus यानी कि वृषभ राशि. Career और business में steady progress, profits भी improve हो रहे हैं. Slow and steady but definitely moving. Lucky color is lavender. Lucky number is 28. जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज रिलेशनशिप्स को नर्चर करो, ट्रस्ट को बिल्ड करो और प्लीज घर के अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को खुद से रोस्ट करना बंद कर दो. लकी कलर इज कोरल. लकी नंबर इज 6. कैंसर यानी कर्क राशि, मनी मैटर्स में थोड़ा सा केयरफुल मोड ऑन कर लो. कोर सेविंग्स और शेयर्ड इन्वेस्टमेंट्स या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को डबल चेक करके हैंडल करो. लकी कलर इज पर्ल व्हाइट. लकी नंबर इज 31. लियो यानी कि सिंह राशि, योर चार्म इज वर्किंग ओवर time. Client conversations or management matters may persuasive raho, lekin thoda sa body ko bhi attention dena banta hai. Your majesty, rest le lo thoda. Lucky color is turquoise and lucky number is 9. Virgo yani kanya rashi, today is basically declutter your life day. Workflows streamline karo, monthly expenses audit karo aur health ko कल से वाली कैटेगरी से निकालकर आज ही करना है वाली कैटेगरी में डालो. लकी कलर इज मस्टर्ड येलो. लकी नंबर इज 22. एंड दैट वाज योर राशि ज़ोन पार्ट 1. बाकी बची 6 राशियों को लेकर आएगी प्रिसिला थोड़ी सी देर में. मीनवाइल यू चेक आउट दीज अमेजिंग मिर्चीदार बैंगर्स कमिंग योर वे एंड फॉलो मी इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome to Rashi Zone Part 2 on Mirchi Mornings with me, Priscilla.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: Libra यानी कि तुला राशि सन और नेपच्यून के कॉस्मिक फेस ऑफ की वजह से क्लोज रिलेशनशिप्स में कंफ्यूजन हो सकता है. सो अजम्पशंस नहीं, क्लियर कम्युनिकेशन करो. क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स दो, ग्रीन सिग्नल है वहां पर. लकी कलर स्काई ब्लू. लकी नंबर इज 17. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, घर का हैप्पीनेस डिप्लोमेसी से मेंटेन होगा. बस अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कर देना, कुछ थॉट्स को प्राइवेट ही रहने दो. लकी कलर इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 4. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एनर्जी लेवल्स थोड़े से लो हो सकते हैं. सो टुडे पुशिंग हार्डर इजंट ऑलवेज द आंसर. रेस्ट लो, पॉज लो, बैटरी को रिचार्ज करो. लकी कलर इज पीच. लकी नंबर इज 27. Capricorn yani makar rashi, a fresh opportunity could bring both professional potential and emotional satisfaction. Basically career or dil dono ek hi meeting mein aa gaye hain. Lucky color is royal blue. Lucky number is 11. Aquarius yani kumbh rashi, a small professional disappointment. Don't let a no become a full blown career existential crisis. Expectations reassess karo and keep moving. Lucky color is magenta. Lucky number is 33. Pisces yani ki mean rashi, aaj over commitment ko politely thanks but no thanks bolo. Loud plans ke bajaye quiet restful time at home might be exactly what you need. Lucky color is sea green. Lucky number is 8. And that's your Weekend Rashi Zone Part 2. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. सुनते रहो मुझे और मुझसे कनेक्ट भी करो. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. अभी के लिए मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: अच्छा बोतला खुल्ला।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स. लेकिन अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है शुरू. जाते जाते तुम्हें एक काम की बात बताकर जाती हूँ जो सारे न्यू जर्सी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत जरूरी है. एआई, लेऑफ्स, टेक्नोलॉजी चेंजिंग द गेम, यंगर कॉलीग्स मूविंग रियली रियली फास्ट एंड अचीविंग ऑल दैट यू वॉन्ट टू अचीव फॉर पास्ट 10-15 ईयर्स एंड समवेयर इन द बैक ऑफ योर माइंड दैट लिटिल क्वेश्चन इज पॉपिंग, एम आई बिकमिंग इररेलेवेंट. अगर ऐसा हाल तुम्हारा भी है तो डोंट लेट दिस क्वेश्चन मेक योर 2027 मोर डिफिकल्ट. ऑन सितंबर 27 यानी कि सिर्फ दो दिन में करियर कोचेस एंड फोर टाइम टेडेक्स स्पीकर्स शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठा आर ब्रिंगिंग एन इन पर्सन करियर ग्रोथ वर्कशॉप टू न्यू जर्सी राइट एट योर डोरस्टेप्स एट शेरटन एडिसन. They've worked with 1500 plus mid-career professionals, helping with promotions, leadership presence, visibility, bigger opportunities, and reported salary increases of 50 to 180%. Sounds really good, right? So maybe it's time to stop asking, yaar, ab agla kya move hona chahiye mere career mein, and start building your before to after career story that you will cherish all your life. September 27th date yaad rakhna, jagah hai Sheraton Edison. Register karna kaise hai ye janna bahut zaruri hai. Jaldi se log on karo playitful.com/nj. That is playitful.com/nj. That is playitful.com/nj. फटाफट से register करो because 27th को यानी कि इस Sunday को है ये event. और इसको मिस नहीं करना चाहिए. अगर और कोई डिटेल्स इसके बारे में चाहिए यू कैन कनेक्ट विथ मी. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. एंड अभी के लिए टाटा बाय बाय है. यू हैव अ ग्रेट वीकेंड. खाओ पियो ऐश करो और ऑफकोर्स मिर्ची सुनते रहो. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फ्राइडे नाइट यानी बड़ी सारी हिंदी मूवीज रिलीज होती हैं आज। कई बार तो ऐसा होता है बेबी कि मूवी हॉल्स में ना फिल्म्स रिलीज नहीं हो रही, लेकिन ओटीटी पे थर्सडे नाइट या फ्राइडे नाइट को रिलीज होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब एवरी फ्राइडे बड़े हॉल्स पे कोई ना कोई बड़े स्टार की फिल्में रिलीज होती थी। फ्राइडे के लिए हमेशा हमारे जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो ना काफ़ी नर्वस रहते थे कि उनकी फिल्में चलेंगी कि नहीं चलेंगी। ऐसे में ना बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ना कुछ कुछ सुपरस्टिशंस फॉलो करते थे, नॉट जस्ट फॉर फ्राइडेज बट ऐसे भी अपनी लाइफ में। अब जैसे कि मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे स्टार के बारे में जिन्होंने नॉनवेज और लिकर दोनों को छोड़ दिया था बिफोर द रिलीज ऑफ हिज बिग बजट फिल्म। कौन थे वो फिनोमिनल डायरेक्टर एंड एक्टर, अभी बताएगी आपको श्रेया। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिस्टर कुमार।
3: या
4: हेलो सर, हाउ आर यू?
3: फाइन फाइन फाइन।
4: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
3: नहीं, आप बता।
4: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
3: रिगार्डिंग व्हाट?
4: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
3: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
4: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
3: हाँ
4: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने? एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को।
3: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
4: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
3: हाँ मिलते हैं।
4: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
3: देखो यार मैं मंडे ट्यूजडे मुंबई जा रहा हूँ। okay. ट्यूजडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
4: मैं ट्यूजडे किसे कितने बजे सर? ट्यूजडे आप मेरे को बताइए।
3: 7 बजे
4: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
3: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
4: सर संडे कितने बजे?
3: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
4: सर संडे 3 बजे दिन में सर? मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
3: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए।
4: पहले अपना ही निकाल ले।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: ये पगला।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

bubble. Up, bubble, bubble. Up, bubble, bubble. Hey! Hey, hey.

0: मेरा नाम जोकर ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी राज कपूर साहब को। ये उनके दिल के सबसे करीब फिल्म थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पे दर्शकों के करीब नहीं पहुंच पाई। दिस वाज अ सुपर फ्लॉप फिल्म और इस फिल्म में बहुत सारा पैसा लगा था राज कपूर साहब का। इनफैक्ट वो एकदम बैंकक्रप्ट हो गए थे जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिरी। उसके बाद उन्होंने जिस फिल्म के लिए अगला काम शुरू किया ना, उन्होंने एक सैक्रिफाइस किया था उस फिल्म के रिलीज तक। वो क्या सैक्रिफाइस था, कौन सी फिल्म थी, आई विल लेट यू नो कुछ गानों के उस पार। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Vai, ora vai, ora vai. It's Gunny.
1: Union Radio Merci New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मूवी का नाम बॉबी, और ये एक ऐसी फिल्म होने वाली थी जिससे शायद राज कपूर साहब अपनी सारी बैंक्रप्सी को रिकवर कर पाते, अपने डेट्स को रीपे कर पाते। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज ना मैं कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ ऑफ आर हिंदी एक्टर्स, डायरेक्टर्स, लेजेंडरी स्टार्स। सो जब राज कपूर साहब की बहुत सारा पैसा लगने के बाद, इनफैक्ट उनका सारा पैसा लगने के बाद मेरा नाम जोकर सुपर डुपर फ्लॉप हो गई ना, तो उन्होंने बॉबी फिल्म बनाई। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिर से कर्जा लिया था बहुत सारे नोन और अननोन रिसोर्सेस से। उनकी ये इकलौती उम्मीद थी अगर उनकी ये फिल्म चल गई तो वो अपने सारे कर्जे को वापस रीपे कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने पता है एक सैक्रिफाइस किया था, एक नहीं बल्कि दो सैक्रिफाइसेस किए थे। उन्होंने नॉनवेज को और लिकर को, ड्रिंक्स को तब तक हाथ नहीं लगाया था जब तक बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन की रिलीज पे ही बॉबी को सुपर हिट नहीं कह दिया गया, एंड आफ्टर दैट ही पार्टीड। तो इसी बात पे बॉबी का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें।
2: Yes!

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें और आज उस जमाने के सुपरस्टिशंस भी चल रहे हैं। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड मैं कुछ बॉलीवुड स्टार्स के ना सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ, कुछ टोटकों की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर रही हूँ जिसपे वो बिलीव करते हैं। अब अगर हम द सुपरस्टार बच्चन साहब को लें तो ये सबको पता चल गया है ना अब तो कि अमिताभ बच्चन इंडिया का कोई भी क्रिकेट मैच लाइव नहीं देखते। उनको ये लगता है कि जब जब वो लाइव देखते हैं ना इंडिया हार जाती है, और अगर कहीं बैटिंग कर रही होती है तो बहुत जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं ना वो सबको रिकॉर्डिंग मोड पे लगा करके छोड़ देते हैं एंड आफ्टर द मैच ही वॉचेज देम। लेकिन ये वाला सुपरस्टिशन उनका सबको पता है, एक जो सिर्फ मुझे पता है मैं अभी आपको बताऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया बैक टू बैक चल रही हैं। आज मैं सुपरस्टिशंस ऑफ हमारे लेजेंडरी बॉलीवुड स्टार्स की बात कर रही हूँ। बच्चन साहब का क्रिकेट को लेकर के क्या सुपरस्टिशन है ये तो सबको पता है कि वो कोई भी इंडिया का मैच जो है ना क्रिकेट का, वो लाइव नहीं देखते, वो हमेशा रिकॉर्डिंग मोड पे डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं, बिकॉज ही फील्स कि अगर वो लाइव विटनेस करेंगे तो इंडिया हार जाती है। एनीवे, दूसरा सुपरस्टिशन जो उन्होंने बातों ही बातों में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पंक्चुअल बहुत है अपनी मूवी की शूटिंग को लेकर के, किसी भी सेट पे पहुंचने को लेकर के। ही सेड कि मैं इतना ज्यादा पंक्चुअल हूँ कि अगर मैं कभी लेट हो जाता हूँ, खुदा ना खास्ता, जो वो कभी नहीं होते हैं, तो उनके दिल में एक खटास सी हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं इस सेट पे लेट क्यों पहुंचा। क्या आज का दिन उनके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा? इमेजिन, उनका ना समय पे कंट्रोल है जो किसी का नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई ही इज दी बच्चन। इसी बात पे बच्चन साहब का एक गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me please,
0: my name is Anthony Gonsalves.
2: How cute.
0: Right, my

0: number 420.
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldi?
2: No! Anthony Gonsalves!
0: Oh, yes! Anthony Gonsalves!
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
4: मिर्ची
5: इसका बाना,
6: हेलो
7: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
6: तो सविता बोल रही हूँ।
7: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
6: क्या परेशानी है?
7: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता।
6: तो वो तो भरता ही है।
7: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
6: अच्छा।
7: ये बुढ़ापे में हो गया ना, पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
6: हाँ हाँ।
7: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
6: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
7: प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या पता आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
6: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
7: नहीं,
6: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
7: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
6: अच्छा।
7: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
6: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ।
7: हाँ, क्या समझ रही
6: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज़, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
7: डॉक्टर सविता।
6: हाँ जी,
8: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही देखा मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
6: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
8: बिल्कुल मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
6: कुकड़ू को।
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जीतू जी आज भी प्लेन में चढ़ने से डरते हैं और इसीलिए वो थोड़ी पूजा पाठ करके ही किसी भी प्लेन को बोर्ड करते हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ द जंपिंग जैक उनको कहा जाता था बिकॉज ही डांस सो वेल। सो जितेंद्र जी का ये सुपरस्टिशन है कि कोई भी फ्लाइट वो बोर्ड कर ले उनको थोड़ी सी पूजा करनी होती है। एंड ही सेज कि उनको फ्लाइट फोबिया है क्योंकि इनिशियल डेज में उन्होंने जब जब फ्लाइट ली तो उसमें टर्बुलेंस रहा, फ्लाइट थोड़ा डगमगाई, ऑल ऑफ इट, उससे उनके दिल में डर घर कर गया और इसीलिए वो फ्लाइट में चढ़ने से पहले ऊपर वाले को बहुत अच्छे से याद करते हैं और उन्हें बटर लगाते हैं। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, जीतू जी की बात हुई है, उनका गाना ना हो ये गुस्ताखी मैं कैसे कर सकती हूँ। सो कमिंग योर वे इज अ सॉन्ग और उसके बाद मैं यहीं बैठी हूँ, मिलते हैं कुछ गानों के उस पर।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट हिट हिट
2: हिट गाना,
3: हिट गाना, हिट गाना।
2: Radio Mirchi, New York. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सुभाष घई की फिल्म थी ये राम लखन, और सुभाष घई का सुपरस्टिशन शेयर करूं मैं पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सुभाष घई का ये सुपरस्टिशन तो हम उनकी हर फिल्म में देखते, इनफैक्ट जो फिल्में उन्होंने 2000s में बनाई उसमें भी देख चुके हैं, फिर चाहे वो परदेस हो या फिर तालो। तो सुभाष घई को हमेशा लगता है कि वो जब भी कोई फिल्म बनाते हैं उसमें उनका स्पेशल अपीयरेंस होना बहुत जरूरी है, और जिस भी फिल्म में वो खुद आते हैं वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। मुझे याद है कि इस फिल्म राम लखन में भी उनका एक स्पेशल अपीयरेंस होता है छोटा सा, यादें में इनका स्पेशल अपीयरेंस होता है, ताल में, परदेस में, इन सब में आप सुभाष घई को देख सकते हो। वैसे आज कुछ ऐसे ही टोटकों की बात हो रही है, कुछ ऐसे ही सुपरस्टिशंस की बात हो रही है जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स मानते हैं। कम राइट बैक, विल शेयर मोर विद यू। मैं हूँ श्रेया, यू कैन कैच मी ऑन फेसबुक और इंस्टा, हैंडल है मेरा आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव।

प्रतिष्ठा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
1: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
0: इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नासिर हुसैन साहब ने अपने फेवरेटिज्म को छिपाने के लिए बात कही हो या फिर अपनी पर्सनल केमिस्ट्री को विद आशा पारेख, लेकिन वो हर बार ये कहते थे कि आशा पारेख उनके लिए बहुत ही लकी हैं एंड दैट इज वाई वो उनको अपनी फिल्मों में रिपीट करते थे। पुरानी जीन्स पे आफर श्रेया के साथ आज ना मैं कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ हमारे बॉलीवुड स्टार्स की। सो कैमरे के पीछे डायरेक्टर नासिर हुसैन, कैमरे के उस पार आशा पारेख, और इस जोड़ी ने बहुत सारी हिट फिल्में दी जिनमें से तीन तो थी जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल एंड ऑफकोर्स मोर ऑफ देम। लोग तो ये भी कहते हैं कि नासिर हुसैन और आशा पारेख के बीच में ना लव एंगल था। आशा पारेख ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी डायरेक्टर साहब से बात हुई उन्होंने इसको सुपरस्टिशन का एंगल दिया, आशा पारेख को अपनी फिल्मों के लिए लकी माना। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, तो इसी बात पे तीसरी मंजिल का गाना हो जाए, डायरेक्टेड बाय नासिर हुसैन एंड हीरोइन बीइंग ऑफकोर्स आशा पारेख। अप नेक्स्ट फॉर यू

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इनकी फिल्मों में ज्यादा काम तो नहीं मिलता था, लेकिन हाँ इनकी जोड़ी इतनी हिट थी कि काका हमेशा इन्हीं का नाम रेकमेंड करते थे, और इसीलिए 9 फिल्में इन्होंने एक साथ करी विच वॉज सुपर डुपर हिट। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ आज ना मैं सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ, हमारे बॉलीवुड स्टार्स के कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस जो उन्होंने एकदम शिद्दत से फॉलो किए। अगर काका की बात लें यानी राजेश खन्ना जी की बात लेना, तो उनके लिए मुमताज जी बहुत लकी थी, ऐसा राजेश खन्ना ने इंटरव्यूज में भी कहा, क्योंकि उनकी जोड़ी को बहुत एक्सेप्टेंस मिली, उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत लाइक किया। एंड मुमताज जी उनके साथ काम करने से पहले ना बी ग्रेड फिल्मों में काम करती थी, लेकिन काका और उनकी जोड़ी ए ग्रेड थी। तो राजेश खन्ना मुमताज को अपनी हर फिल्म के लिए बहुत लकी मानते थे, और इसीलिए डायरेक्टर्स को उन्हीं का नाम सजेस्ट करते थे। आपकी कसम हो, दो रास्ते हो, अपना देश हो, प्रेम कहानी हो, सो मेनी ऑफ देम, पूरी 9 हिट फिल्में। तो इन्हीं दोनों की केमिस्ट्री का एक बहुत ही स्वीट सेंशस गाना मुझे बड़ा पसंद है, जिसमें थोड़ा नटखट हो रही है मुमताज जी एज ऑलवेज, उन्हें प्यार से बाय द वे काका मोटी कहा करते थे, और राजेश खन्ना ऐसे दिखा रहे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उनकी हीरोइन की बिंदिया चमकेगी या चूड़ी खनकेगी। पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया, यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Burka. Navir bala burka. Mirci burka.
1: Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine, fine, fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता दो।
2: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग व्हाट?
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो साढ़े 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मुंबई जा रहा हूँ, ट्यूसडे आप एक काम करो मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूसडे किसी कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर, मंगलवार को 7 बजे। मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
2: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर
2: पहले अपना ही निकाल।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। आप सुन रहे हैं पुरानी जींस, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हट जाए।
1: हो जाए।

इस फिल्म में लीड हीरो तो ऋषि कपूर थे और उनके साथ सपोर्टिंग एक्टर का रोल कर रहे थे राकेश रोशन। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। राकेश रोशन साहब का सुपरस्टिशन तो हम सबको पता है, जब उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की तो सब फिल्में केस से शुरू होनी थी, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई एज अ फिल्म मेकर 1987 की खुदगर्ज वो सुपरहिट फिल्म बनी। फिर उसके बाद उन्होंने बनाई के से ही खून भरी मांग, फिर उनको के का ना एकदम चस्का चढ़ गया। ही बिकेम लाइक अब भाई मेरी जितनी फिल्में क से शुरू होंगी। फिर उन्होंने बनाई किशन कन्हैया, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया के सीक्वल, क्रिश बनाई क्रिश के सीक्वल, ऑल ऑफ दैट। अब अगर कुछ करने से आपका आपकी चीजें अच्छी हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सुपरस्टिशन तो आ ही जाता है ना उस चीज को लेकर के। राकेश रोशन साहब के साथ भी यही हुआ, किरण नहीं के। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ जो आज कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हो फॉर बॉलीवुड स्टार्स। अगले कौन होंगे बताऊंगी, कम राइट बैक।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब ने ना लता जी को इस बात के लिए बहुत ब्लेम किया क्योंकि वो लता जी को अपनी फिल्मों के लिए लकी मानते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरस्टिशंस ऑफ आवर बॉलीवुड स्टार्स टुडे। एंड राज कपूर जो थे ना, उनकी हर फिल्म में लता जी का गाना होता था। इनफैक्ट सिर्फ लता जी ही गाती थी अगर फीमेल गाना है तो। लेकिन एक फिल्म जिससे ये प्रथा को रोका गया वॉज मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में लता जी की आवाज नहीं थी और जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एकदम धड़ाम गिरी, फ्लॉप हुई, तो राज कपूर ने एक्चुअली में लता जी को भी ब्लेम किया कि दीदी तुमने इस फिल्म में गाना नहीं गाया था मेरे लिए, इसीलिए ये अनलकी रही। पुरानी जीन्स पे राज कपूर साहब की फिल्म जिसके लिए लता जी ने गाना गाया, वैसे तो बहुत सारे पर ये वाला मैं स्पेशली लेकर के आई हूँ। सुनिए और वापस आइए श्रेया के साथ।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ। और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मैं इस वॉर ऑफ वर्ड से थक चुका हूँ यार. आई डोंट वॉन्ट टू ब्लेम जेंजीज फॉर एनी थिंग. आई मीन दे आर गुड. आई एम इंस्पायर्ड बाय देम इन मेनी वेज. मिर्ची सुन रहा आप, मेरा नाम क्रिश है. तो इतनी सारी चीजें दुनिया में हो जाती हैं जेन अल्फा मिलेनियल इन सबको कुछ नहीं बोला जाता. जेन जीज को पकड़ा जाता है क्यों, ये क्यों है इतने बुरे. इतनी सारी चीजों में दे इंस्पायर अस अ लॉट. वो हमें बोलते हैं कि आपको नहीं करनी जॉब तो आप छोड़ दो ना. आप क्यों परेशान हो रहे हो, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी क्यों खो रहे हो. बिजनेस स्टार्ट कर लो, अपना खुद का कुछ काम कर लो, ब्रेक लो, सांस लो, एंजॉय करो. और कहीं पे परेशान हो रहे हो तो आवाज उठाओ. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई तो सपोर्ट जेंजीज इन ऑल द वेज पॉसिबल. एम आई थिंकिंग राइट या कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, आपका कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है. आओ बात करते. इंस्टाग्राम इज ओपन फॉर एवरी वन यार. मिर्ची क्रिश के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ. KRISH इज

0: Amici!
1: Iscabana, puscabana, sacabana, rabana, burga, burga, la virba la burga, Amici, burga!
2: Hello.
3: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
2: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
4: अरे बोल कौन रहा है
3: सर, ये वाला भेज दें बीप।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
4: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
4: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेज दें सर, ये वाला बीप।
2: अरे बावले हो गए हो क्या?
4: अरे बावले हो गए हो क्या?
3: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, ये और करोगे बीप।
2: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
4: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
2: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
4: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
2: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
4: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: सर ये वाला ठीक है बीप।
2: अबे पागल, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
4: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
4: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
4: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
3: सेंट। सर ये वाला गया सेंट, ठीक है सर।
2: अरे भाई किसको भेज दिया?
3: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
2: अबे ओ पागल मॉडल, ये क्या कर रही है? मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पागल।
5: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

23 अक्टूबर को एक बिल्कुल नया फिनोमेना थिएटर्स में रिलीज होने वाला है। बिल्कुल नया ही है, इसका नाम सुनेंगे तो आपको भी लगेगा मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। द फिनोमेना दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड पहला प्यार दूसरी बार। दिस इज अ न्यू मूवी बाय अगेन लव रंजन, वही प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको। ये वही हैं जिन्होंने प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी ये सारी मूवीज रिलीज करी थी। उसके बाद तू झूठी मैं मक्कार, इसके बाद अब प्यार का पंचनामा स्टाइल में ही ये 6 न्यू कमर्स को लेकर आए हैं। और अगर इसका ट्रेलर आप देखेंगे जो कि कल रिलीज हुआ है, इसका ट्रेलर देखने में भी आपको सेम वाइब आएगी कि सेम प्रोडक्ट की नई पैकेजिंग है एंड सेम काइंड ऑफ पंचेस, सेम काइंड ऑफ दोस्ती, सेम काइंड ऑफ प्यार। सो आप भी एक बार देखो और मुझे बताओ, दूसरी बार नहीं, पहली बार अगर देख लिया हो तो दूसरी बार नहीं बैठी, नहीं बात है ना, कोई बात नहीं, इस मूवी का नाम भी नहीं बैठा, पहला प्यार दूसरी बार, कोई नहीं, आप देख के बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पर हूं, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम। मुझे तो एग्जैक्टली सेम लगा, तो मुझे ये लगेगा कि मैं वही मूवीज को दोबारा देख रहा हूं, बाकी आप बताना। दिस इज मिर्ची, इट्स आउट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

म्यूजिक इंडस्ट्री में दो लोग ऐसे हैं जो जब भी एक दूसरे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ बोलते हैं उनके फैंस को मजा आने लगता है। ऑफकोर्स मैक्सिमम लोग समझ गए होंगे मैं किन दो लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है, टॉकिंग अबाउट बादशाह एंड यो यो हनी सिंह। 2024 में यानी अब से दो साल पहले एक ट्रैक आया था बाय बादशाह कॉल्ड गॉन गर्ल, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली तो कह ही नहीं सकते, अब तो डायरेक्टली बोलोगे इसको, कि उन्होंने एक डिस किया था बेसिकली यो यो हनी सिंह को बाय सेइंग कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा। सो अब जाके यानी दो साल बाद यो यो हनी सिंह ने इसका जवाब दिया है, और वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। कासा टुपका एंथेमो जो नया ट्रैक आया है यो यो हनी सिंह का, उसमें उन्होंने बोला तेरी वोट का कहाँ गई, क्या हुआ बिकी ने, ये बेसिकली एक जाइव है डायरेक्टली बादशाह के रीसेंट वोट का ब्रांड वेंचर का। मैं कह रहा हूँ देखो लड़ाई ये लोग करते हैं, मजा इनके फैंस को आ जाता है। देयर इज एन आर्मी प्रॉपर ना, बादशाह आर्मी वर्सेज यो यो हनी सिंह आर्मी। तो दो लोग कहीं कुछ कह दें हमें मजा आ रहा है ना। आप किसकी साइड रहते हो मैक्सिमम टाइम्स बताना। इंस्टाग्राम पे मिर्ची क्रिश के नाम से हूं, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम, दिस इज मिर्ची।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
7: You just imagine for once कि आप काफी साल से किसी एक काम को परफेक्शन के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। You are actually good at it. अब आप एक दूसरा नया काम करते हो और वो रिकॉग्निशन जो इतने सालों से उस काम के लिए नहीं मिला आपको, इस नए काम में आते ही मिल गया। रणदीप हुड्डा की बात कर रहा हूँ मैं, मिर्ची सुन रहा हूँ। मेरा नाम क्रिश है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रणदीप हुड्डा विनिंग अ नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर कैटेगरी। उन्होंने मूवी बनाई थी स्वतंत्र वीर सावरकर, उसके लिए उन्हें डेब्यू डायरेक्टर की कैटेगरी में अवार्ड मिल गया। अब वो कह रहे हैं कि आई एम ऑलवेज एन एक्टर फर्स्ट। भाई मतलब उनको बनना ही एक्टर था, वो तो अलग बात है कि टू बी रिकॉग्नाइज फॉर माई क्राफ्ट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एज अ डायरेक्टर, ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए जितना भी खुशी मनाई जाए वो कम है ऑब्वियसली। लेकिन ये थोड़ा वियर्ड नहीं लगा? इतने साल हो गए उन्हें, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में रणदीप हुड्डा ने हमें दी हैं एज एन एक्टर, और डायरेक्टर की कैटेगरी में पहला ही नेशनल अवार्ड। सही है भाई, तो आई थिंक इसमें ना उन्हें थोड़ा ये समझना चाहिए कि मे बी थोड़ा सा शिफ्ट करके अगर वो चेंज कर लें अपनी कैटेगरी तो इधर ज्यादा फायदा है। बाकी देखते हैं, जैसी उनकी मर्जी। फिलहाल आप कुछ बढ़िया गाने सुनिए, ये हमारी मर्जी। दिस इज मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, poscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
3: तो सविता बोल रही हूँ।
4: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
3: क्या परेशानी है?
4: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता।
3: तो वो तो भरता ही है।
4: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
3: अच्छा।
4: ये बुढ़ापे में हो गया ना, पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
3: हाँ हाँ।
4: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
3: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
4: प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या पता आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
3: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
4: नहीं,
3: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
4: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
3: अच्छा।
4: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
3: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ।
4: हाँ, क्या समझ रही
3: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
4: डॉक्टर सविता।
3: हाँ जी,
5: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही बेगा मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
3: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
5: बिल्कुल मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
3: कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

तो चलो आगे बढ़ते हैं. आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बनाई हुई मिस्ट्री थ्रिलर्स के बारे में इन टुडेज पांच का पंच. मिर्ची सुन रहा आप, मेरा नाम क्रिश है. अभी तक इस लिस्ट में दो मूवीज के बारे में आपको बता चुका हूँ. नंबर पांच पर थी तलाश दी आंसर लाइज विद इन और फोर्थ पर थी तलवार 2015 में आई इरफान खान मूवी. अब आते हैं नंबर थ्री पर. कहानी 2012 में आई ये मूवी स्टारिंग विद्या बालन डायरेक्टेड बाय सुजॉय घोष जिसमें विद्या बालन प्लेड अ प्रेग्नेंट वुमन का रोल जो लंदन से कोलकाता अपने मिसिंग हस्बैंड को ढूंढने जाती है. सब जगह डेड एंड दिखता है लेकिन एट द एंड क्या होता है. देखो वैसे तो ये मूवी काफी लोगों ने देखी हुई है बट फॉर सम पीपल जिन्होंने नहीं देखी होगी आई ऑब्वियसली डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू सो गो एंड वॉच इट. फिर सेकंड पर आती है माय पर्सनल फेवरेट्स में से एक अंधाधुन 2018 में आई ये मूवी स्टारिंग आयुष्मान खुराना तबू एंड राधिका आप्टे डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन. Now you want to make a masterpiece of a movie, bring some great actors together और फिर कमाल देखो. ये movie वही कमाल करती है. आयुष्मान खुराना का character visually impaired piano player है but he can actually see. और फिर वो एक web of murder में फंसते ही जाते हैं. Again, इस movie को special बनाती है इस movie की जबरदस्त cast. So in case, by chance, once in a rare moments, आपने नहीं देखी है तो जरूर देखो मजा आएगा. बाकी नंबर वन पे कौन सी मूवी है ये गेस करो. मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे बताओ मिर्ची क्रिश के नाम से. आई एम देयर. दिस इज मिर्ची. इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

आई थिंक मिस्ट्री थ्रिलर्स बॉलीवुड का वो जॉनरा है जो वो काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। इसीलिए आज की पांच का पंच में वी आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड के एपिक पांच ऐसी मूवीज जो मिस्ट्री थ्रिलर से भरी हुई हैं। एंड हमने अभी तक बात करी पांचवें नंबर पर तलाश दी आंसर लाइज विद इन के बारे में, फोर्थ पर आई तलवार, थर्ड पर कहानी, सेकंड पर अंधाधुन। अब नंबर वन बताने से पहले ऑफकोर्स मेरा एक स्पेशल मेंशन आएगा, ये वो मूवी है जो कि आज की डेट में कल्ट क्लासिक है, गुप्त द हिडन ट्रुथ 1997 में आई स्टारिंग बॉबी देओल उर्फ लॉर्ड बॉबी एंड काजोल, डायरेक्टेड बाय राजीव राय। साहिल यानी बॉबी देओल का कैरेक्टर अरेस्ट हो गया है फॉर मर्डरिंग हिज स्टेप फादर, बट ही हैज टू प्रूव दैट ही समहाउ इनोसेंट। आगे जो जो होता है और क्लाइमैक्स में जो रिवील होता है वो आई थिंक सबको पता है, बट दिस मूवी इज एज्ड लाइक अ फाइन वाइन बिकॉज अब ये टाइमलेस क्लासिक है, हेंस द स्पेशल मेंशन। एंड अब आते हैं नंबर वन पे जो कि मुझे पता था काफी लोग गेस कर लेंगे, ऑफकोर्स दृश्यम 2015 की ये मूवी स्टारिंग अजय देवगन, तब्बू एंड श्रिया सरन, डायरेक्टेड बाय निशिकांत कमत। वैसे तो ये 2013 की मलयालम मूवी दृश्यम का ही रीमेक है, लेकिन एक मूवी कितनी सक्सेसफुल है ये आपको तभी समझ में आ जाता है जब 11 साल बाद भी उसका थर्ड पार्ट आने वाला हो और उसका एक डायलॉग इतने साल बाद भी हम सबको याद हो। यस, हम सबको पता है कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, हेंस दिस मूवी डिजर्व्स द फर्स्ट स्पॉट। अगर मैं कोई बहुत बढ़िया मिस्ट्री थ्रिलर मिस कर रहा हूं देन डू टेल मी अबाउट इट एंड वी कैन टॉक अबाउट इट ऑन एयर। मिर्ची क्रिश के नाम से आई एम ऑन इंस्टाग्राम, जाओ वहां पर बताओ, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम, दिस इज मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है पता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी हंस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

diye. So we all know what happened recently jab Katrina Kaif ko troll kiya gaya. काफी सारे सेलिब्रिटीज उनके सपोर्ट में आए, जिसकी शुरुआत खुद भाई ने करी थी अपनी टी शर्ट उतार के इन वन ऑफ बिग बॉसेस एपिसोड्स. मिर्ची सुन रहे हो, मेरा नाम क्रिश है. लेकिन अभी रिसेंटली समीरा रेड्डी ने एक बड़ा अच्छा पोस्ट डाला एंड आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट. उसमें उन्होंने अपनी फोटोज और वीडियोज का मॉन्टाज डाला एंड शी रोट कि बॉडी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप एक वेल नोन पर्सनैलिटी हो, चाहे यंग टीन हो, चाहे एक न्यू मदर हो, आपको अपनी बॉडी से प्यार करना बहुत जरूरी है. ट्रोल्स तो देखो जो भी हैं कहते रहेंगे, उसके बारे में अगर आप सोचोगे तो क्या ही होगा. यही मैं बोल रहा हूँ, ट्रोल आर सो बैड. और इसी के साथ साथ एक पोस्ट ये भी मैंने देखा एंड आई हैव टू क्रॉस चेक इट कि विवेक ओबेरॉय ने भी शायद इसके बारे में बात करी है कि भाई सही कह रहे हैं, ट्रोलिंग एक बुरी चीज़ है. विवेक ओबेरॉय तो अच्छी बात है, सपोर्ट करते हैं भाई का. इट्स रियली गुड टू सी दैट. बट एनीवेज द पोस्ट वाज गुड बाय समीरा रेड्डी. हैव यू सीन इट? गो एंड चेक इट आउट यार. मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है. इट्स हॉट.

0: दोस्तों, फ्राइडे की शाम में ना कुछ अलग ही जादू होता है। शाम शादा लाइक सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ पूरा हफ्ता हम सब अपनी अपनी लाइफ के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बने होते हैं, मीटिंग्स, ईमेल्स, ट्रैफिक, डेडलाइंस, न जाने क्या क्या चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं, फिर आता है फ्राइडे और वो बोलता है कि यार अब तो हीरो बन जाओ। क्योंकि फ्राइडे इवनिंग का मूड ना बिल्कुल बॉलीवुड ओपनिंग सीन जैसा होता है। लाइट्स थोड़ी ब्राइटर लगती है, म्यूज़िक थोड़ा बेटर लगता है और प्लान्स चाहे बड़े हो या ना हो, एक्साइटमेंट फ्री में मिल ही जाती है यार। कोई मूवी नाइट प्लान कर रहा है, कोई फ्रेंड्स के साथ डिनर जा रहा है और कुछ लोग बस घर पहुंच के एसी और काउच के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं। लेकिन यार सच्ची बताऊँ ना तो बॉलीवुड में ना हमें यही सिखाया गया है कि ज़िंदगी परफेक्ट होने का वेट नहीं करना चाहिए। बैकग्राउंड में अच्छा म्यूज़िक चलाओ और सीन एन्जॉय करो। तो चलिए आज की शाम शानदार में भी हम वही करेंगे, थोड़ी मस्ती, थोड़ा म्यूज़िक और थोड़ा बॉलीवुड मैजिक। तो आप भी बताओ दोस्तों, अगर आपकी फ्राइडे नाइट एक बॉलीवुड मूवी होती तो उसका जॉनर क्या होता? कॉमेडी, रोमांस, एक्शन या फुल ऑन फैमिली ड्रामा? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और इस फ्राइडे शाम को शानदार बनाने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा, जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना, वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए, चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
2: अरे बोल कौन रहा है
3: सर, ये वाला भेज दें बीप।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है
3: ये भेज दें सर बीप।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
0: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
2: अरे बावले हो गए हो क्या
3: सर, एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
2: अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
2: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
0: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
2: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
0: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: सर ये वाला ठीक है बीप।
2: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
0: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
0: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले, तेरे में बुद्धि कम है।
0: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
3: सेंट सर, ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
2: अरे भाई किसको भेज दिया?
3: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
2: अबे ओ पागल, ये क्या कर रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कभी नोटिस किया है? कुछ गाने ना सुनने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जैसे ही मिर्जापुर का नाम सुनते हैं ना, दिमाग में सबसे पहले गन्स, बौकाल, पावर गेम्स, रिवेंज, यही सब आता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गाना है जो बिल्कुल उल्टा एहसास देता है। जी हाँ, वारू फॉरएवर। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये गाना ओरिजिनल यानी वारू उसका नया वर्जन है, जो फैंस के बीच इतना ऑर्गेनिकली पॉपुलर हो गया कि यार मेकर्स ने उसे फिल्म के लिए दोबारा लाया। और इस बार श्रेया घोषाल और रोमी की आवाज़ ने उस इमोशन को और भी गहरा बना दिया था। कंपोजर आनंद भास्कर और लिरिसिस्ट जिनी दीवान ने उसी रूह को एक नई कहानी के साथ फिर से जिंदा किया था। और शायद यही वो बात है कि यार वारू फॉरएवर ना इतना अलग लगता है, लेकिन फिर भी अपना सा लगता है, क्योंकि मिर्ज़ापुर की इतनी वॉयलेंट दुनिया में भी ये गाना याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर ना एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होता है। तो कभी-कभी सबसे लाउड कहानियों के बीच सबसे खामोश गाने ही दिल में घर बना देते हैं। तो चलिए, अगर आज का दिन थोड़ा स्लो है या बस 2 मिनट की सुकून की तलाश है, तो ये गाना शायद आपकी प्लेलिस्ट में अपनी जगह बना ले। सुनते हैं वारू फॉरएवर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कितने बार ऐसा होता है कि हम एक आउटफिट चूज करते हैं और वो एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि यार अब मेरी पर्सनैलिटी इस आउटफिट से रिप्रेजेंट नहीं हो रही। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और प्रोफेशनल आइडेंटिटी के साथ भी ना कभी कभी वही होता है, रोल गलत नहीं होता, एक्सपीरियंस कम नहीं होता, बस हम ग्रो कर चुके होते हैं और अब दुनिया को आपका अपडेटेड वर्जन भी दिखना चाहिए। सो न्यू जर्सी September 27 को शेरिटन एडिसन में आ रहे हैं 4-time TEDx स्पीकर्स, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स एंड मल्टी अवार्ड विनिंग करियर कोचेस शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठ विद देयर इन पर्सन करियर ग्रोथ वर्कशॉप। दे हैव ऑलरेडी हेल्प 1500+ मिड करियर प्रोफेशनल्स विद प्रमोशंस, डबल प्रमोशंस, स्ट्रॉन्गर विजिबिलिटी, बिगर अपॉर्चुनिटी एंड इवन 50 to 180% सैलरी रेजेस। एंड दिस वर्कशॉप इज अबाउट रिवाइटलाइजिंग योर करियर, रिपोजिशनिंग योर वैल्यू एंड स्टेपिंग फॉरवर्ड विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो आज ही जाइए, रजिस्टर कीजिए एट playitfull.com/nj, playitfull.com/nj, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो न्यू जर्सी का September 27 का शेरिटन एडिसन में इनका वर्कशॉप। नाम याद रखना, कपिल एंड शिल्पा कुलश्रेष्ठ, या फिर रजिस्टर कीजिए एट playitfull.com/nj। तो बस वही आप, लेकिन अपग्रेडेड एडिशन में अगर चाहिए तो इस करियर वर्कशॉप को जरूर अटेंड कीजिए। और तब तक के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आंखों ही आंखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़, ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़, ओए आंखों ही आंखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, ओए कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ, ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़, ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है पता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Mr. Kumar.
3: Yeah.
4: Hello, sir. How are you?
3: Fine.
4: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
3: नहीं, आप बता दीजिए।
4: हाँ, तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
3: रिगार्डिंग
4: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
3: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
4: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊँ?
3: हाँ
4: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को।
3: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
4: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
3: हाँ मिलते हैं।
4: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
3: देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
4: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
3: 7 बजे
4: सर, मंगलवार को 7 बजे। मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
3: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
4: सर संडे कितने बजे,
3: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
4: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो।
3: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर
4: पहले अपने ही निकाल।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

दोस्तों, हर दिन न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर इकोनॉमी की इतनी बातें होती है ना कि कभी कभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इतने सारे सोर्सेस से अपडेट्स इतने सारे मिलते रहते हैं, लेकिन हर अपडेट पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी तो ये समझना है कि वॉट रियली मैटर्स टू अस। तो अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स में घर भी शामिल है तो आज की बात आपके काम ज़रूर आ सकती है, क्योंकि इतने सारे अपडेट्स और इतने सारे ऊपर नीचे जो मार्केट के हो रहे हैं, व्हाट दैट रियली मींस फॉर होम बायर, ये बताएंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

फ्राइडे को ना एक अजीब सुपर पावर मिल जाती है, वही घर वही किचन लेकिन मूड सडनली वीकेंड वाला। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और न्यू जर्सी का वीकेंड मोड ऑफिशियली ऑन हो चुका है, क्योंकि यार मंडे को जो डाइनिंग टेबल ना बिल्स और लैपटॉप से भरा था, फ्राइडे को वही टेबल पे फ्रेंड्स आ जाते हैं, म्यूजिक चलता है, बातें शुरू होती है और किचन में कुछ चटपटा बनने लगता है, और फिर वो बोल आता है जिसके अराउंड सब ऑटोमेटिकली गैदर हो जाते हैं, मतलब गर्मा गर्म छोले, कभी चना चाट विद प्याज टमाटर नींबू और मसाला, और कोई साइड से ऑलरेडी स्पून लेकर टेस्ट टेस्ट करने के लिए हाजिर होता है। और यही तो खास बात है काबुली चने की, क्योंकि यार मंडे के मील में तो सिंपल होता है लेकिन वीकेंड पे फुल ऑन एंटरटेनर, और जब बेस हो दी प्रीमियम इंडियन ओरिजिन काबुली चना तो बाकी क्रिएटिविटी तो आपके ऊपर है। तो यार वीकेंड पैंट्री रेडी रखते हैं विद दी प्रीमियम इंडियन ओरिजिन काबुली चना, अवेलेबल एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए टेबल सेट हो चुका है, गैंग ऑलरेडी रेडी है, और अब वीकेंड का ऑफिशियल किक ऑफ करते हैं इन बॉलीवुड बीट्स के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इधर।
1: भाई क्यों मार रहे हो इसे?
0: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
0: कौन है पता?
1: कोहली।
0: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
0: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

बॉलीवुड में हीरो सिर्फ प्यार ही नहीं निभाता, जिम्मेदारी भी निभाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और चाहे कभी खुशी कभी गम का राहुल हो, स्वदेश का मोहन, यार असली हीरो तो वही होता है जो अपनों के लिए हमेशा खड़ा रहे, कभी घर लौट कर तो कभी दूर रहकर भी, हर जरूरत का ख्याल रख के। क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फोन कॉल से ही नहीं चलती, कभी कभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट की भी जरूरत होती है। और उस सपोर्ट का सबसे आसान तरीका होता है घर पर पैसे जल्दी और बिना टेंशन के पहुंच जाना। और इसीलिए टैप टैप सेंड, यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में भेजिए इंस्टेंट मनी ट्रांसफर्स, ग्रेट एक्सचेंज रेट्स और जीरो ट्रांसफर्स फी के साथ, यानी नो वेट एंड नो हैसल। डाउनलोड द टैप टैप सेंड ऐप टुडे, सेंड मोर एंड स्पेंड लेस। और अब एक गाना जो अपनों की याद हमेशा दिला ही देता है, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

घर में चार लोग और चार अलग मूड्स हो तो ओटीटी चूज करना भी ना फैमिली मीटिंग बन जाती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और इस वीकेंड तो मीटिंग और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हिस्ट्री और एक्शन का मूड है तो द रिवॉल्यूशनरीज, जहाँ भुवन बम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह प्रजिता यंग फ्रीडम फाइटर्स की कहानी लेकर आ रहे हैं। क्राइम थ्रिलर चाहिए तो घमासान में अरशद वारसी और प्रतीक गांधी आमने सामने, और फैमिली के साथ कुछ हल्का फुल्का देखना है तो चुंबक में नीना गुप्ता, सुमित व्यास और देवन भोजानी के साथ कॉलोनी वाली कॉमेडी केओस लेकर रेडी रहने वाले हैं। मतलब यार एक स्क्रीन लेकिन मूड के हिसाब से तीन कंप्लीटली डिफरेंट डेस्टिनेशन। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आप ओटीटी पर जॉनर चूज करते हो, स्टोरी देखते हो या कास्ट देखते ही प्ले का बटन दबा देते हो? जरूर बताना ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सुद्धि SIDDHI। और वैसे वॉच लिस्ट तो आप संभाल ही लेंगे, प्ले लिस्ट हम संभाल लेते हैं। अगला बॉलीवुड गाना मिर्ची पर, ओनली फॉर यू राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virpa la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: हेलो डॉक्टर सविता से बात करा दिए।
1: तो सविता बोल रही हूँ।
2: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
1: क्या परेशानी है?
2: ना एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
1: तो वो तो भरता ही है।
2: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
1: अच्छा।
2: ये बुढ़ापे में हो गया ना, पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
1: हाँ हाँ।
2: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
1: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
1: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
2: नहीं,
1: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
2: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
1: अच्छा।
2: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
1: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ।
2: हाँ, क्या समझ रही
1: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
2: डॉक्टर सविता।
1: हाँ जी,
3: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही हूँ। देखा, मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
1: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
3: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
1: कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

दोस्तों बॉलीवुड में कमबैक का चार्म अलग ही होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी कोई एक्टर ब्रेक के बाद वापस आता है ना, तो ऑडियंस का रिएक्शन इमोशनल भी होता है और क्यूरियस भी, क्योंकि उस एक्टर के साथ मेमोरीज जुड़ी होती है। और जब वो वापस स्ट्रांग रोल में आता है ना, तो यार वो सिर्फ एक कमबैक ही नहीं, एक मोमेंट बन जाता है। और ऐसे फेवरेट एक्टर को या एक्ट्रेस को इतने सालों बाद फिर एक बार बड़े पर्दे पर देखने का चार्म ही अलग होता है। वैसे आजकल ऐसे कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ये भी ट्राई कर रहे हैं कि वो OTT पे आए। तो यार बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे उनका ट्रांजिशन देखना, और बहुत सालों पहले जो उन्होंने हीरो के रोल किए थे वो चेंज होकर अब वो एक एक्टर या कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, ये देखना भी एक अलग ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप भी मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा कमबैक है एक बड़े एक्टर का जो आपको बहुत पसंद आया। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही। लेकिन इसका जो ये खास गाना है जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना तो हम ट्विस्ट सुनते थे, क्योंकि यार नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज़ ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे। और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन, इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था। और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मज़े की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे। मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो। वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: तू भी
2: आस। इधर
1: हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट।
5: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
6: हिट हिट हिट हिट गाना।
7: हिट गाना।
6: हिट गाना।
5: Radio Mirchi, New York. It's hot. It's

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। जी हाँ, लव आज का कल का, लव आज कल कंपोज्ड बाय प्रीतम। और उस एल्बम का जो ये गाना है, ये एक ऐसा गाना था जिसने यार ब्रेकअप को भी ना मुस्कुरा कर देखना सिखा दिया था। ऑफकोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, चोर बाजारी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर ब्रेकअप सॉन्ग्स रुला देते हैं या फिर फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, मतलब अरिजीत सिंह टाइप्स, लेकिन चोर बाजारी ये हार्ट ब्रेक को भी ना थोड़ा शरारती बना देता था। मतलब अगर आज की शाम में ट्रैफिक में फंसे एक्स की याद आ भी जाए तो ये गाना कहता है कि यार थोड़ा हंस लो उस पर, क्योंकि नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की नोकझोंक भरी वोकल्स बिल्कुल दो एक्स लवर्स की टीजिंग जैसी लगती है। और प्रीतम ने इसमें दर्द को ढोलक और बाउंस के साथ पैकेज किया। मतलब सोचिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। मज़े की बात तो ये है कि इम्तियाज़ अली ने इस गाने को ना स्पेसिफिकली सैड सेपरेशन जोन में नहीं रखा था, डेलिबरेटली प्लेफुल बनाया था, क्योंकि जय और मीरा का जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म होके भी मूवी में ख़त्म नहीं हुआ था, और इसीलिए गाना ब्रेकअप सॉन्ग होकर भी सेलिब्रेशन लगता है। और वो अकॉर्डियन स्ट्रीट बैंड जैसा जो फील है ना, वो यार दिल्ली की गलियों में सीधा लेके जाता है जहाँ दिल और ईगो दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। वैसे आप भी बताना कि हार्ट ब्रेक का कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है। क्या वो इसी तरह हल्का वाला गाना है या फिर दिल तोड़ के चीर देने वाला गाना है? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। फिलहाल करेंगे इसी एल्बम पे थोड़ी और बातें, लेकिन आपके लिए राइट हियर चोर बाजारी ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के उस सुपर डुपर हिट एल्बम की जिसका यार हर एक गाना धमाकेदार था, कंपोज्ड बाय प्रीतम। 2009 का लव आजकल का एल्बम, और वैसे तो यार इसके सारे ही गाने अमेजिंग थे, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुन के ना शांत रहना इम्पॉसिबल हो जाता है, आर फेवरेट आहू आहू। क्योंकि सच बताओ तो आहू आहू वो गाना है जो सुनते ही बॉडी पहले रिएक्ट करती है और दिमाग बाद में बोलता है, फिर चाहे इवनिंग ड्राइव टाइम हो या किचन में चाय बन रही हो, इस बीट पे शोल्डर्स खुद हिलने लगते हैं। क्योंकि नीरज श्रीधर की जो प्लेफुल वोकल्स है, मास्टर सलीम का पंजाबी फायर और सुजन डी मेलो का एटीट्यूड और ऊपर से प्रीतम के ढोल मीट्स क्लब का ग्रूव, ये गाना मतलब फुल ऑन कंट्रोल्ड मैडनेस है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जो सॉन्ग का फोक क्लब फ्यूजन है ना, उस वक्त ही इतना ज़्यादा फ्रेश लगता था, और ना सिर्फ उस वक्त अभी भी उतना ही ग्रूविंग है। और उसके ऊपर मास्टर सलीम का जो रस्टिक पंच है, उसने इस ट्रैक को वो देसी स्वैगर दिया था जो हमें सीधा डांस फ्लोर पे लेके जाता है। वैसे ऑनेस्टली ये जो गाना है वो उन रेयर गानों में से है जो थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, थोड़ा सा टीज करता है और बहुत ज़्यादा ग्रूव कराता है। तो चलिए आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि आहू आहू सुन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टिल बैठे हो। टेल मी ऑन कि ये गाना सुन के क्या आपने थोड़ा हेड बॉप किया या फिर फिंगर टॉप किया या फिर स्टरिंग पे बीट मारी, और अगर मारी तो यू आर कॉट। दोस्तों मुझे जरूर बताना कि ये सब हुआ कि नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए आपके लिए लव आजकल का आऊं आऊं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Profit Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi burka.
2: Hello.
3: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा, जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना, वो रीप्ले भी करेगा। तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए, चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
2: अरे बोल कौन रहा है
3: सर, ये वाला भेज दें बीप।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है
3: ये भेज दें सर बीप।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
2: अरे बावले हो गए हो क्या
3: सर? एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
2: अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो, भेज के तो देखो, ये वाला भेज दूं लास्ट।
2: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
2: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
0: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: सर ये वाला ठीक है बीप।
2: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
0: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
0: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
0: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
3: सेंट सर, ये वाला गया सेंड, ठीक है सर।
2: अरे भाई किसको भेज दिया?
3: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
2: अबे ओ पागल, ये क्या कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका हर एक गाना ना सिर्फ सुपर डुपर हिट था बल्कि दिल को छू लेने वाला था। जी हाँ, वैसे तो इस एल्बम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, इसके गानों के बहुत सारी बातें की है। कंपोज्ड बाय प्रीतम, लव आजकल का एल्बम, जिसमें यार चोर बाजारी जैसा ब्रेकअप वाला गाना भी था जिसने ब्रेकअप के बाद मुस्कुराना सिखा दिया था, और एक ऐसा गाना था जिसने बस दूरियों को महसूस कराना सिखाया था। जी हाँ, ये दूरियां बाय मोहित चौहान, क्योंकि कुछ गाने सुनते ही ना दिल में उतर जाते हैं और दूरियां उन्हीं में से एक गाना था। जब चोर बाजारी हमने सुना था तब लगा था कि इम्तियाज अली और प्रीतम ने इस एल्बम को काफी ब्रॉड रेंज बनाया था कि एक हार्ट ब्रेक के गाने को भी इतने हल्के से शरारती रंग में दिखाया था, लेकिन फिर पता चला क्योंकि बाद में दूरियां आने वाला था, क्योंकि दूरियां वो एक ऐसी कहानी बताता था जब साइलेंस भी बोलने लगता है, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज़ ही ऐसी थी, जो रॉनस उनकी आवाज़ में थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाना गा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि दिल से कुछ बोल रहे हैं। और प्रीतम का कंपोजिशन भी देखिए, मतलब ना कोई बीट्स, बस गिटार और हवा और थोड़ी सी साइलेंस, जैसे गाने में भी ना फासला हो। और यही तो कमाल की बात है इस गाने की, ये गाना सिर्फ दूरियों की बातें नहीं करता, दूरियां महसूस कराता है। किसी का साथ छूटना, लॉन्ग डिस्टेंस या बस एक इमोशनल गैप, हर कोई जो इस गाने को सुनता है ना अपनी कहानी में उसे रख देता है। और मज़े की बात तो ये है कि मोहित चौहान के फ्री फ्लोइंग फ्रेजिंग और ऑलमोस्ट एक कन्वर्जेशनल टाइप सिंगिंग ने इस ट्रैक को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट बना दिया, और शायद इसीलिए ये हार्ट ब्रेक एंथम कम पर्सनल कन्फेशन ज़्यादा लगता है। वैसे आप भी मुझे बताइए, क्या आपको ये गाना उतना ही डीप लगता है जितना मुझे लगता है? टेल मी ऑनेस्ट एट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और अगर इस गाने ने दूरियाँ फील कराई है तो किसको याद करके आज ये गाना सुन रहे हो वो भी बताना। तब तक के लिए सुनते हैं दूरियाँ फ्रॉम द अमेजिंग एल्बम लव आजकल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, हर शहर का ना अपना एक मौसम होता है और हर मौसम के साथ एक खास याद जुड़ी होती है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, मौसम की बातें हो रही है तो यार, किसी को मौसम के नाम से ना मुंबई की बारिश याद आती है, भीगी सड़कें, कटिंग चाय और वो हल्की सी रश वाली फीलिंग। तो किसी को दिल्ली की सर्दी याद आती है, फॉग, स्वेटर्स और धूप सेकने वाली मॉर्निंग्स। और किसी को अपने होम टाउन की शाम, जहाँ हवा धीमी चलती थी और वक्त भी। तो तब याद आता है ये गाना, जमाना लागे। जब वो लाइन आती है ना कि तुम्हारे शहर का मौसम, तो लगता है कि किसी एक जगह का नहीं, एक एहसास का जिक्र हो रहा है। क्योंकि सच तो यही है दोस्तों कि शहर बदल जाते हैं पर उनके मौसम दिल में रह जाते हैं। तो आप भी बताओ कि आज के मौसम के हिसाब से आपको किस शहर की याद आ रही है। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि जिस भी शहर की याद आ रही हो, ये गाना आपको शहर तक जरूर लेके जाएगा। सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी हंस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों. चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस. लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है. जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पे बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची. शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ.